मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की

0: ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वार्ता, धान की फसल की तैयारी।
2: आज हम बात करेंगे धान के खेत की तैयारी के बारे में। धान हमारे देश के खरीफ मौसम की महत्वपूर्ण खाद्यान्न की फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर किसान भाई करते हैं। धान की खेती की अच्छी पैदावार केवल उन्नत बीज खाद पर निर्भर नहीं करती, बल्कि खेत की सही तैयारी भी उतना महत्वपूर्ण रखती है। यदि खेत की तैयारी वैज्ञानिक तौर तरीके से की जाए तो पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं, खेत में खरपतवार कम होते हैं, पानी का सही प्रबंधन होता है और उत्पादन में अच्छी वृद्धि होती है। इसलिए धान की खेती करने से पहले खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। आज की इस वार्ता में इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धान की खेती शुरू करने से पहले खेत से पिछले फसल के अवशेष, खरपतवार और कंकड़ पत्थर को हटाकर खेत को साफ कर लें। इससे खेत की जुताई करना आसान हो जाता है। यदि खेत में पुराने खरपतवार, कीटों के अंडे मौजूद हों तो वे नई फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए खेत की प्रारंभिक सफाई धान उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी कदम माना जाता है। धान की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है, जिससे धान के पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। धान के खेत का समतल होना भी उतना ही जरूरी होता है, ताकि सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से फैल सके। धान के खेत की पहली जुताई गर्मी के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर से करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है और सूर्य की तेज गर्मी से कई प्रकार के हानिकारक कीट, फफूंद, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया से मिट्टी भुरभुरी बनकर पौधों की जड़ों के विकास में मदद पहुंचाती है। यदि खेत में कठोर परत बन गई हो तो किसान भाइयों, गहरी जुताई करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इससे वर्षा का पानी मिट्टी में अच्छी तरह समाहित होता है और खेत की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। पहली जुताई करने के बाद खेत में हल्की सिंचाई यानी पलेवा करें। जब मिट्टी में उचित नमी आ जाए तब दूसरी जुताई का काम करना चाहिए। इससे मिट्टी नरम हो जाती है और बड़े ढेले टूट जाते हैं। दूसरी जुताई करते समय किसान भाइयों, खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाना बहुत लाभकारी होता है। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से 100 कुंटल अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद खेत में मिलाने का काम करें। इससे मिट्टी की जैविक गुणवत्ता बढ़ती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व लंबे समय तक धीरे धीरे मिलते रहते हैं। धान की खेती में खेत का समतल होना बहुत आवश्यक होता है।

0: समतल न होने से खेतों में कहीं पर पानी अधिक भर जाता है तो कहीं पर कम रहता है, जिससे पौधों की वृद्धि समान रूप से नहीं हो पाती। आधुनिक तरीके से लेजर लैंड लेवलर या फिर पारंपरिक रूप से पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए। धान के खेत को समतल बना लेने से पानी की बचत होती है, पौधों की समान वृद्धि होती है, उर्वरकों का सही उपयोग होता है और खरपतवारों के नियंत्रण में भी किसान भाइयों काफ़ी मदद मिलती है। धान की खेती में पानी को रोककर रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाने का काम करना भी बहुत अनिवार्य होता है। मेड़बंदी से बारिश या सिंचाई का पानी खेत से बाहर नहीं निकल पाता, साथ ही पोषक तत्वों और उर्वरकों का बहाव भी रुक जाता है। यदि खेत की मेड़ मजबूत होती है तो किसान कम पानी में भी धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कई किसान मेड़ों पर घास या दलहनी फसलें लगाकर अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। यदि रोपाई विधि से धान की खेती करना है तो पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी की मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी होनी चाहिए। नर्सरी वाले खेत में गोबर की खाद मिलाकर अच्छी तरह जुताई करना चाहिए। बीज बुआई से पहले खेत को समतल कर हल्की नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा धान के उन्नत और रोग मुक्त बीजों का चुनाव करना चाहिए, इससे बेहतर पौध तैयार होती है। बीज को उपचारित कर बुआई करने से फफूंद से लगने वाले रोगों की फसल में रोकथाम हो जाती है। धान की खेती में किसान भाइयों पडलिंग का बहुत महत्व होता है। इस काम को करने के लिए रोपाई से पहले खेत में अच्छी तरह पानी भरकर मिट्टी को कीचड़ जैसे बनाया जाता है, जिसे पडलिंग कहते हैं। यह धान की खेती के एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अच्छी तरह पडलिंग करने से खेत में खरपतवार कम उगते हैं, इससे मिट्टी में पानी लंबे समय तक ठहरता है। पौधों को समुचित विकास के लिए जड़ों को उचित वातावरण मिलता है। यही नहीं, खेत में धान की बेहन रोपाई भी आसानी से हो जाती है। पडलिंग के लिए खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर ट्रैक्टर, कल्टीवेटर या फिर पडलर चलाकर यह कार्य किया जाता है। इसके बाद खेत को समतल कर धान की रोपाई का काम किया जाता है। धान की रोपाई करने से पहले किसान भाइयों मिट्टी की जांच कराना भी आवश्यक होता है। इससे खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी मिल जाती है, जिससे किसान सही मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे उर्वरकों की लागत में कमी आती है, पौधों को संतुलित पोषण मिलता है और मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है। किसान मृदा परीक्षण का काम अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र या फिर सरकारी मृदा प्रयोगशाला में खेत की मिट्टी के नमूने ले जाकर मिट्टी की जांच करा सकते हैं। धान के खेत की तैयारी में हरी खाद का उपयोग मिट्टी के सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए ढैंचा, सनई या मूंग जैसी फसलों को खेत में पलटकर हरी खाद बनाई जाती है। ढैंचे की फसल से मिट्टी की प्रति हेक्टेयर लगभग 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 से 12 किलोग्राम पोटाश की प्राप्ति होती है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा में काफ़ी वृद्धि होती है। हरी खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, इससे किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ने से मिट्टी भुरभुरी बनती है, इसमें मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी बढ़ती है। किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवारों का उगना एक बड़ी समस्या है। खेत की तैयारी के दौरान ही इनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता।
1: अभी आप सुन रहे थे धान की फसल की तैयारी विषय पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से वार्ता। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर की असीम अनुकंपा है इस सृष्टि का निर्माण, जिसमें सामंजस्य है, प्रेम और पाती का, दिया और बाती का, जिसका आभूषण है स्नेह, सद्गुण, करुणा और सौहार्द।

हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंदिर में दीपक जलाने से पहले अपने घर को रोशन करें। दूसरे से कुछ पाने के बजाय कुछ खोने का मादा रखें। दूसरे पर हंसने के बजाय आत्ममंथन करें।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में जिन गायक कलाकारों ने अपना स्वर दिया वो थे नितिन मुकेश, महेंद्र कपूर और बलवंत राय भट्ट। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है अहंकार और हमारी संस्कृति।
1: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्तिकला के कायल थे, इसीलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा अहंकार था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए? अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। ये सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है? वो बोल उठा, कैसी त्रुटि? झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। इस कहानी की शिक्षा यही है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। ऐसा ही एक प्रसंग है। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद प्रथम बार विदेश यात्रा पर गए थे। वहां उनके स्वागत करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। विवेकानंद पूरी तरह गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उनके माथे पर पगड़ी बंधी हुई थी। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें एक विदेशी दंपति ने देखा और स्त्री ने मजाक में कहा, देखो जेंटलमैन को। विदेश में पैंट शर्ट पहनने वाले को जेंटलमैन कहा जाता है। विवेकानंद जी के विचित्र पहनावे को देखकर उस स्त्री ने हंसी उड़ाई थी। ये बात स्वामी जी के कानों तक सुनाई दे गई। जब वे स्त्री पुरुष विवेकानंद जी के पास से निकले तब स्वामी जी ने कहा, बहन इधर आते वक्त आपने मुझे देखकर ये कहा, देखो इस जेंटलमैन को। स्त्री ने स्वीकार किया और बोली, आपके विचित्र पहनावे को देखकर मैंने परिहास किया था। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपने ये कहा इसका मुझे कोई दुख नहीं है, न ही कोई क्षोभ।

0: परंतु इस शब्द के प्रति हमारे जीवन में जो दृष्टि है उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। बहन, आपके यहां जेंटलमैन का निर्माण दर्जी करते हैं, परंतु हमारे यहां जेंटलमैन का सृजन संत करते हैं। अपने विचारों में सुंदरता लाने के बाद ही ऐसा संभव होता है। आपके देश में व्यक्ति दर्जी द्वारा सिले कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और अंदर से भले ही कुछ भी ना हो, फिर भी वो जेंटलमैन कहलाता है। हमारे देश में व्यक्ति कैसा भी कपड़ा पहने, अगर वो अंदर से संस्कारी होता है तो वो जेंटलमैन अर्थात सज्जन कहलाता है। आपके और मेरे विचार में जेंटलमैन की व्याख्या में बस इतना ही फर्क है। हमारी भारतीय संस्कृति महान है।
1: आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम। आज का विषय था अहंकार और हमारी संस्कृति। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी वाराणसी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इसमें विषय है मधुमेह कारण लक्षण और उपाय। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज लगभग हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज से प्रभावित है। आज हम डायबिटीज को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। यह क्यों होता है, शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। मधुमेह क्या है और क्यों होता है? तो हम जो खाना खाते हैं जैसे रोटी, चावल, फल या मिठाई, इसका कार्बोहाइड्रेट पार्ट पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब होता है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाकर उन्हें ऊर्जा देता है, लेकिन इस ग्लूकोज को ब्लड से शरीर की कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं इंसुलिन। यह इंसुलिन हमारे शरीर के पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि में बनता है। अब यदि किसी भी कारण से इंसुलिन हमारे शरीर में कम बनने लगे या इंसुलिन ठीक से काम न करे, तो ऐसी स्थिति में खून का ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर शरीर के मसल कोशिकाओं और अन्य कोशिकाओं में नहीं जा पाता और यूज नहीं हो पाता, जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है और यही स्थिति डायबिटीज मिलाइटस यानी मधुमेह कहलाती। अब आते हैं डायबिटीज मिलाइटस के प्रकार। डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज यह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है, इसलिए ऐसे मरीजों को इंसुलिन लेना जरूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज यह सबसे कॉमन टाइप है। इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन शरीर उसे ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए इसे इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज बोला जाता है। अब सवाल आता है, आजकल डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गलत खानपान, कम फिजिकल एक्टिविटी, तनाव, मोटापा और खराब लाइफस्टाइल। मोटापे का डायबिटीज से क्या संबंध है? पेट की चर्बी केवल बाहर से दिखाई देने वाली समस्या नहीं है, यह शरीर के अंदर कई हार्मफुल इन्फ्लेमेटरी बायोकेमिकल्स बनाती हैं जो इंसुलिन के काम में रुकावट डालती, जिससे धीरे धीरे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है और फिर शरीर में शुगर बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है पेट की बढ़ती चर्बी टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। अक्सर एक सवाल लोग पूछते हैं कि क्या ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है? आपको बता दूं कि डायरेक्टली केवल चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, ज़्यादा कैलोरीज मोटापा यानी ओबेसिटी बढ़ाते हैं और फिर ये ओबेसिटी के कारण डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज की सबसे खतरनाक बात क्या है? डायबिटीज धीरे धीरे शरीर की ब्लड वेसल्स और नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आगे चलकर हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी कम होना, पैरों में सुन्नपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, मधुमेह अचानक नहीं होता, यह हमारी रोज की आदतों से धीरे धीरे विकसित होता है, इसलिए सही जानकारी और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगले भाग में हम बात करेंगे मधुमेह के लक्षण, जांच, डायग्नोसिस, इन सब के बारे में। धन्यवाद श्रोताओं।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। विषय था मधुमेह

कारण लक्षण और उपाय विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंदमग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज आप सुन रहे थे इसकी 110वीं कड़ी। गाय कलाकार थे सुरेश वाडकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स ओटीटी पर। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा डॉक्टर आरपी शास्त्री का वायलिन वादन। और इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे मुराद बानो का उपशास्त्रीय गायन। खेल दर्पण आप सुनेंगे रात्रि 10:00 से, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीतों गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की कड़ी संख्या 9 आज आप सुनेंगे रात्रि 8:10 से। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 8:00 कलाकार होंगे उषा टंडन और राहत अली। और इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे असिंचित दशा में खेती की उन्नत तकनीक विषय पर बातचीत। के अलावा सतीश चंद्र यादव व साथियों का गाया लोकगीत, इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 1:45 पर और 9:50 पर।

युवाणी कार्यक्रम शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात। क्या आप जानते हैं यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। धरती के गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे से। आज आप सुनेंगे ब्रज गीत, सुहाने तराने, ओल्ड इज गोल्ड। इसका प्रसारण होगा दिन में 2:30 बजे से।

ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया का प्रसारण होगा दिन में 1:15 पर। इसमें महिलाएं चर्चा के अलावा कामकाजी महिलाएं और पारिवारिक संतुलन विषय पर सुरभि जायसवाल से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनेंगी गीत संगीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो होगा व्हाट्सएप पर आधारित, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आप सुनेंगे 10 बजे से। सदाबहार फिल्म गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण होगा सुबह 8:45 पर। गुड मॉर्निंग बनारस रोज की तरह आप सुनेंगे सुबह 7 बजे से। इसके अलावा

संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और 7:31 पर रसरंग के जरिए। ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: केन्द्रीय मन्त्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादशवर्षेषु भारतस्य अङ्गारखननक्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 28-2000 तम वर्षस्य आईसीसी महिला 20-प्रति 20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

बनारस अपने आसपास गांवों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, गलियों में, बल्कि ये कहें कि पूरे शहर और दूसरे शहरों में भी हर मोड़ पर आपको चाय का ठीहा आसानी से मिल जाता है। अपने बनारस में जिसे अड़ी बोलते हैं, ये अड़ियां गपबाजी, हंसी ठहाकों, बातचीत और कई बार गंभीर विचार विमर्श का केंद्र भी बन जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, चाय की इन दुकानों पर अक्सर एक छोटू पाया जाता है जिस पर अमूमन किसी की नजर नहीं जाती। ये छोटू गिलास धोता है, चाय भरता है, आसपास की दुकानों और दफ्तरों में चाय पहुंचाता है और कभी कभी एक छोटी सी डायरी में हिसाब भी लिखता है। ये छोटू हमारे लिए बस एक छोटू है, लेकिन हम कभी नहीं देख पाते कि इस छोटू की आंखों में भी एक ख्वाब है, एक सपना है, आसमान को छू लेने की ललक है, खुले फलक पर उड़ने की उम्मीद है। बनारस, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे छोटू हैं जो ऐसे छोटे मोटे ठीहों पर काम करते हुए बड़े हुए और वही खत्म हो गए, लेकिन उनमें से कई सारे छोटू ऐसे भी हैं जो इन तंग हाल जिंदगी से आगे बढ़े, अपने सपनों को नए पंख दिए, अपनी ऊंचाई को नए आयाम दिए, अपने हिस्से के आसमां को नए फलक दिए, अपने ख्वाबों को ताबीर का अमली जामा पहनाया। और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उन छोटुओं को किसी बड़े ने अपनी उंगली थमाई और फिर वो बन गया जन्म जन्म का साथ। तो अब जब ऐसी गुमटियों पर आप जाएं और कोई छोटू उस्ताद दिख जाए तो उससे मिलें, दो बातें करें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनका सही मार्गदर्शन करें, उन्हें गाइड करें। कौन जानता है, आज का ये छोटू कल का पीएम बन जाए।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। बनारस कार्यक्रम के शुरुआत में हम बातें कर रहे थे छोटे सपनों के बड़े बनने की, और ये बात कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है, हकीकत है। और आज हमारे प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वे इसकी मिसाल हैं, जिन्होंने एक छोटा सा सपना लेकर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके परिश्रम ने उन्हें न केवल देश विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई बल्कि पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित करवाया। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल की, जिन्हें कालाजार जैसी गंभीर बीमारी की दवा विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। IMS BHU में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर SS अग्रवाल की ये जो दवा है इसे WHO से मान्यता प्राप्त है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर SS अग्रवाल की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
1: प्रिय श्रोताओं, एक आदमी काम करता रहता है तो उसको कभी ये याद नहीं रहता कि या कभी ये अपेक्षा नहीं रहती कि पद्म पुरस्कार लेने हैं, करता जाता है। तो मैं करीब 40 वर्षों से एक बीमारी कालाजार जिसको कहते हैं उस पर अध्ययन कर रहा हूं, और हमने कुछ ऐसे विधाएं निकाली हैं जिससे कालाजार का उन्मूलन हो गया है भारतवर्ष में, बांग्लादेश नेपाल में भी हुआ है। और इसमें हमने 10 मिनट में कालाजार की डायग्नोसिस और एक इंजेक्शन से कालाजार का ठीक होना ये हमने याद किया, जो कि पहले हफ्तों लग जाते थे पता लगाने में कि कालाजार है कि नहीं, और इलाज एक महीने हुआ करता था और इंजेक्शन, अभी सिर्फ एक दिन में इलाज हो जाता है। और मैं बहुत ही हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि 2023 में जो कालाजार निवारण प्रयास था वो सफल हुआ और नेपाल और बांग्लादेश में भी हो गया सफल, और हम लोग का ये चल रहा है 23 में सफल हुआ था, 24, 25 और 26 उसके बाद अगला जो साल है उसमें हमें WHO द्वारा ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हम लोगों ने कालाजार का उन्मूलन भारतवर्ष से कर लिया। मैं तो यही कहूंगा कि जो काम करिए वो पैशन से करिए, जज्बा बहुत तगड़ा होना चाहिए, और छोटी मोटी या फेलियर भी आप बड़ी बड़ा फेलियर भी हो, आप असफल भी हो, तब भी तो छोड़े ना और अपना प्रयास चालू रखे, अपने अपने जो गोल आपने सेट किया है वहां तक चले, और ईमानदारी से जो भी काम कर रहे हैं आप समाज में या रिसर्च में या जिस भी फील्ड में जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, ईमानदारी होना बहुत जरूरी है और फिर आप कुछ न कुछ जीवन में कर पाएंगे। धन्यवाद आपका।
0: अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर SS अग्रवाल को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बनारस अब आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे और जान लेते हैं बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। बनारस लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस के उपलक्ष्य में 14 जून से करीब 2 हफ्तों तक यात्रियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। उनका तिलक और आरती के साथ स्वागत होगा। उन्हें आम, अमरूद जैसे फलदार और छायादार पौधे भी दिए जाएंगे। ये जानकारी सोमवार को एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्य टर्मिनल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य प्रस्तुतियां और बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। इसके अलावा हेल्थ चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। बनारस सिपाही बनने की तमन्ना के साथ भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी सोमवार को सामान्य अध्ययन और गणित के सवालों में उलझ गए। हालांकि हिंदी और रीजनिंग में वे सहज दिखे। GS में नदियों के नाम, सरकारी योजनाओं और कई अन्य समसामयिक विषयों पर प्रश्न पूछे गए। हिंदी में पर्यायवाची शब्द और मुहावरे वाले सवाल उन्होंने पलक झपकते हल कर दिए। जिले में 3 दिवसीय परीक्षा के पहले दिन दोनों पालियों में केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। दोनों पालियों में अभ्यर्थियों का उत्साह देखते ही बना। उनकी धारणा यही थी कि इस बार पेपर पिछले साल के मुकाबले कठिन रहा। कहा कि रटकर परीक्षा देने वालों का कल्याण नहीं होगा, हाँ जिसने पढ़ाई की होगी उसके लिए जरूर रास्ता बनेगा। तो ये 3 दिवसीय परीक्षा है बनारस। कल इसका पहला दिन था और भी आज और आने वाले कल भी ये परीक्षाएं होंगी, और इसकी वजह से शहर में काफी भीड़भाड़ का भी आलम है। तो ऐसी स्थिति में आप जब शहर में निकले

घर के बाहर तो इसके लिए तैयार होकर निकलें, क्योंकि पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के पहले दिन सोमवार को बनारस और कैंट रेलवे स्टेशन और रोडवेज अभ्यर्थियों से पटा रहा। कैंट स्टेशन पर बैठने के लिए और फिर ट्रेन के गेट पर चढ़ने और ट्रेन में घुसने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। प्लेटफॉर्म 1 से 9 तक हर आने जाने वाली ट्रेन पर अभ्यर्थियों का कब्जा रहा, यहाँ तक कि आरक्षित सीट करने वाले यात्रियों को प्रवेश करने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ी। बनारस बीएचयू के प्रबंध शास्त्र संस्थान में सोमवार को 34 दिव्यांग छात्राओं को ज्ञान प्रभा छात्रवृत्ति प्रदान की गई। अरविंद मफतलाल फाउंडेशन से वित्त पोषित इस पहल का संचालन ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की ओर से किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन और उसके सहयोगी संस्थानों द्वारा दिव्यांगजनों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। समावेशी शिक्षा के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते उन्होंने कहा कि बीएचयू ने सदैव दिव्यांग छात्र छात्राओं के विकास और उन्नति के लिए कार्य किया है। बीएचयू में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए सोमवार को स्वतंत्रता भवन में भूमि पूजन हुआ। ये आयोजन 13 और 14 जून को होगा। सोमवार को स्वतंत्रता भवन परिसर में विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार और बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये भूमि पूजन किया। आयोजन समिति ने बताया कि इस वर्ष का यह अधिवेशन AI एंड एथिक्स, वन हेल्थ और नेट जीरो पर केंद्रित है। 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश से संगठन और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लगभग 1500 प्रतिष्ठित सदस्य, वैज्ञानिक, विद्वान, तकनीशियन, शिक्षक, नीति निर्माता, शोधकर्ता और विद्यार्थी सहभाग करेंगे। बनारस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में योग के व्यापक प्रसार और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर 3 दिनी योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। CDO प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आयोजन से पहले वाराणसी के सभी 8 विकास खंडों हरहुआ, काशी विद्यापीठ, आराजी लाइन, चिरईगांव, बड़ा गांव, चोलापुर, सेवापुरी और पिंडरा में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा 12 से 14 जून तक ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। और बनारस, आपको बता दें कि सूरज के तल्ख तेवर के चलते दिन का तापमान कल 44 डिग्री के पास पहुंच गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री रहा। 9 और 10 जून को लू का अलर्ट जारी हुआ है। तापमान के लिहाज से बनारस सोमवार को प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा। मौसम विभाग ने 12 से 14 जून के बीच बारिश का अनुमान लगाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये प्री मानसून बारिश होगी। 14 के बाद 2-3 दिनों तक गर्मी एक बार फिर प्रचंड रूप दिखा सकती है। तो बनारस ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब आइए चलते हैं आगे और जान लेते हैं बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन यानी 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 11 जनवरी 1966 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। पद पर रहते हुए ही उन्होंने सुप्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान दिया था। आज जन्मदिन सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई, भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी, संगीतकार अनुष्का शंकर और फिल्म अभिनेत्री द्वय अमीषा पटेल और सोनम कपूर का। साथ ही आज है पुण्यतिथि आदिवासी नेता और लोकनायक बिरसा मुंडा, स्वाधीनता सेनानी हरिकिशन सरहदी, दिनेश चंद्र मजूमदार और अब्बास तैयब जी, प्रसिद्ध शायर असद भोपाली, सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक राज खोसला और सुप्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की। तो बनारस ये थी बातें गुजरे हुए कल की। और अब आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, बनारस काशी कथा। और काशी कथा में आज बातें आदि शंकराचार्य और काशी की। भारतीय संस्कृति के संरक्षक, संवर्धक और विश्व के अद्वितीय दार्शनिक आदि शंकराचार्य का आविर्भाव जम्बू द्वीप के सांस्कृतिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। आज से करीब 2500 वर्षों पूर्व केरल के कालड़ी ग्राम में जब आपका प्राकट्य हुआ था, उस समय भारत में अनेक धर्म और मत मतांतर थे।
ठीक इसी समय जगतगुरु शंकराचार्य जी इस पावन भारत

रणभूमि पर अवतरित हुए। आपने अपनी विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत तर्क शक्ति और समन्वय कला से सभी मतों का खंडन मंडन करते हुए प्राचीन वैदिक धर्म और सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की। आचार्य का काशी से भी गहरा जुड़ाव था। वे अपने गुरु श्री गोविंद भगवत पाद की आज्ञा से 12 वर्ष की आयु में काशी पधारे थे और यहाँ आने पर उन्होंने सबसे पहले गंगा जी को नमन करके

सूत्र पर नूतन भाष्य लिखने का आदेश दिया। आचार्य शंकर ने भगवान विश्वनाथ की स्तुति की, अन्नपूर्णा जी के गुण गाए और भगवती गंगा की पद वंदना की। काशी में ही शंकराचार्य जी को वेदव्यास जी के दर्शन हुए थे और वेदव्यास जी ने उन्हें प्रसन्न होकर 16 वर्ष की अतिरिक्त आयु प्रदान की थी। इस संबंध में कथा ये है कि जब 16 वर्ष की आयु में ही शंकराचार्य जी ने सभी भाष्य आदि रचना रच दिए तो एक दिन उन्हें वेदव्यास जी के दर्शन हुए। आचार्य शंकर से भगवान व्यास ने सूत्र भाष्य पर शास्त्रार्थ करना शुरू किया। भगवान व्यास को न पहचानने के कारण आचार्य शंकर उनसे 8 दिनों तक शास्त्रार्थ करते चले गए। अंततः जब उन्होंने भगवान व्यास को पहचाना तो उनके समक्ष नतमस्तक होकर दिव्य स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर भगवान व्यास ने उन्हें व्यास की पदवी प्रदान की। आचार्य शंकर उस समय अपना शरीरांत करने की बात सोचने लगे थे। इस पर भगवान व्यास ने उन्हें मना किया और 16 वर्ष की अतिरिक्त आयु प्रदान करते हुए वैदिक धर्म की संस्थापना का आदेश दिया। भगवान वेदव्यास से आदेश प्राप्त होकर आचार्य शंकर काशी के दशाश्वमेध घाट पर पहुँचे और वहाँ दिग्विजय का संकल्प ग्रहण किया। आपके संकल्प का गंगा जी ने भी अनुमोदन किया। तब शंकराचार्य जी ने गंगाष्टकम से गंगा जी की स्तुति करके माता अन्नपूर्णा से ज्ञान रूपी ढाल और वैराग्य रूपी कवच प्राप्त किया और विश्वनाथ जी से प्रस्थान त्रयी रूपी महाअस्त्र के प्रयोग की अनुमति प्राप्त करके दिग्विजय को निकल पड़े। आपने अपने बेहद कम जीवन काल में लगभग 300 रचनाएं रची और चारों दिशाओं में 4 धर्म पीठ स्थापित किए। तो काशी कथा में ये था आज का अंक। काशी कथा। तो बनारस अब चलने का वक्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जैसा कि प्रशासन से और मौसम विभाग से भी सूचना है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच कोशिश करिए कि घर में ही रहना पड़े। बाहर निकलना हो तो अच्छे से ढक करके, कान ढक करके और पेट भर पानी पी करके जरूर निकले। और अब अपने बनारसी बाबू को इसी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
3: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है, हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर

0: जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
1: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़ _ GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस

कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7:32:15 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने डॉक्टर आरपी शास्त्री का वायलिन वादन। राग है बैरागी भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित ललित कुमार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं डॉक्टर आरपी शास्त्री का वायलिन वादन। अब आइए सुने इन्हीं की बजाई भैरवी में धुन। तबला संगत कर रहे हैं पंडित कुबेर नाथ मिश्र।

0: डॉक्टर आरपी शास्त्री की वायलिन पर बजाई भैरवी में धुन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का आज ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कि

0: कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा ₹75 का स्मारक सिक्का और ₹5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम

0: स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के

0: शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणी एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
2: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। ज़रई वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वजीरों के माबेन खसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, खवातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ज़रई इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहिरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुजश्ता 12 बरसों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए अपनी जेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की

0: साजिशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदामात का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
1: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है, जो कि अब ज़्यादा काबिल रसाई, किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इकतसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
2: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा। क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था? मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए, ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसी तर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मेयारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेर क़यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाक़े के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाक़े की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता, नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेस ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमेरिका की विफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। विफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने विफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था, उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर जीआई टैग वाली तेजपुर लीची बैनुल अक्वामी मार्केट में पहुंच

0: है?
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें
5: 0542227658
6: 0542227658
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत है। यह है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म अभी तो जी ले। इस फिल्म का गाना है किशोर कुमार की आवाज़।

0: याद कभी कभी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: संदेश के बाद सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में एक बार आपका पुनः स्वागत। आइए सुने अनमोल मोती फिल्म का गाना, इसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई पहुँचे मंत्री।

0: रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है दामों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
1: मैं उपभोक्ताओं से ये आग्रह करूं कि इस वक्त संकट का समय है, हमें इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये संकट खत्म होगा तो निश्चित तौर पर सरकारें अपना जो निर्णय लेंगी वो आपके सामने होगा।
0: प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बीते दिनों एक भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति में गोरखपुर स्थित योगी राज्य बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रूपए से बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहाँ जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती, विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर जीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुआई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुआई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की बुआई की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गांव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहां PR 126 प्रजाति की बुआई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुआई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40-50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गाँव अख्तियारपुर पहुँचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और 1 महीने पहले लापता हुई उनकी माँ लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4,183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिश्चीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रूपए आकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित AV बायो मेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी माटन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
3: प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालबेट तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया उन्हें 1 माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की

0: व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाए। प्रभारी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवर, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकारी उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 9:25 और 45 सेकंड। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना आई है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से। यह हैं शगुन भारती, इनके पिता का नाम है प्रमोद कुमार। ये निवासिनी हैं बारी गांव नेवादा थाना मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर की। ये पिछले 23 दिसंबर 2025 दिन 3 बजे से लापता हैं। शगुन भारती के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है, इकहरा बदन। ये लापता होने के समय गुलाबी चेकदार सूट पहने हुए हैं। शगुन भारती के बारे में

कोई भी सूचना या जानकारी अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक के जनपद जौनपुर को देने की कृपा करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त एक सूचना आई है। इसमें हैं बबली यादव, इनके पिता का नाम है विनोद यादव, ये निवासी हैं ग्राम डैना थाना सकलडीहा जनपद चंदौली। ये पिछले 2 अप्रैल 2026 दिन 9:30 बजे से लापता हैं। बबली यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने हुए हैं। अगली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर से आई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है माया देवी, इनके पति का नाम है स्वर्गीय फूलचंद गौड़, ये निवासिनी हैं ग्राम कनकपुर थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या की। ये पिछले 30 मार्च 2026 से लापता हैं। माया देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 50 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य, आंखों का विवरण सामान्य। ये लापता होने के समय हरे रंग की साड़ी, गले में काला धागा पहने हुए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से एक और सूचना आई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है नेहा मौर्या, इनके पिता का नाम है श्री रविंद्र मौर्या, ये निवासिनी हैं बलुआ हरदत, ग्राम हरदतपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली की। ये पिछले 19 मई 2026 से लापता हैं। नेहा मौर्या के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा गोल है, इकहरा बदन। ये लापता होने के समय महरूम रंग का सलवार सूट पहने हुए हैं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार ये हैं अमृता देवी, इनके पति का नाम है दिनेश, ये ग्राम हिंदवारी पोस्ट मर्दा थाना अलीनगर जनपद चंदौली की निवासिनी हैं, ये पिछले 1 मई 2026 से लापता हैं। अमृता देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 34 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है, ये लापता होने के समय लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। अमृता देवी के संबंध में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
1: समिन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से आपकी मेजबान प्रोग्राम आयशा राहत आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब। समिन बज़्म हर अहद, हर जमाने और हर दौर में अदब के ऐसे चाहने वाले हुए हैं कि जिन्होंने अदब से अपना ताल्लुक हमेशा कायम रखा। उन्होंने अदब की किसी न किसी सिंफ से अपना जुड़ाव रखा और इससे हमेशा जुड़े रहे। समीन, कहा जाता है कि कहानी की उम्र उतनी ही है जितनी हजरत इंसान की, तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि किस्से कहानियां हमेशा से ही लोग पसंद करते आए हैं और आज भी सुनना पसंद करते हैं। समीन, आज सिर्फ फर्क इतना आया है कि कहानियां अदब की मुख्तलिफ असनाफ के जरिए हमारे सामने आती हैं।

0: चाहे वो ड्रामा हो, नावल निगारी हो या फिर अफसाना निगारी ही क्यों ना हो। आज इस सिन्फ को बेहद पसंद किया जाता है और देखा जाता है कि अफसाने को लोग बहुत शौक से सुनते हैं कि इस प्रोग्राम में। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खूबसूरत अफसाना जिसका उन्वान है यतीमों का संगम, और अफसाना निगार हैं जनाब मोहम्मद यामीन बरकाती। तो आइए समाप्त करते हैं उनका ये अफसाना।
1: बाबूजी, हम इतने रुपए नहीं लेंगे, साहिल मना नहीं करता, हम नहीं लेंगे, आखिर क्यों? बाबूजी भीख में एक या दो रुपया देते हैं, बहुत सखी हुआ तो 10-5 रुपए देते हैं, 100 रुपए कोई नहीं देता। जब हम 100 रुपए लेकर घर जाएंगे तो अम्मी जान समझेंगी कि हमने चोरी की है, इसलिए वो हमें मारेंगी। देखिए, हम 2 घंटे से मांग रहे हैं, मुश्किल से 20-25 रुपये होंगे, इसमें 1 रुपया 2 रुपये के ही सिक्के हैं, 5 या 10 रुपये का एक भी सिक्का या नोट नहीं है। अगर आपको ये रुपये देने ही हैं तो मेरे साथ घर चलिए और अम्मी के सामने दीजिए, तो हम अम्मी की पिटाई से बच जाएंगे। बेटा, तुम इतने समझदार हो, अच्छे माँ बाप की औलाद मालूम होती हो, फिर भी क्यों मांग रही हो? बाबूजी, हम सच कहते हैं, हमारे अब्बू अम्मी बहुत अच्छे हैं और हम भिखारी भी नहीं हैं, मगर हम बहुत मजबूर और परेशान हैं। सुनिए, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया, मुसीबत का पहाड़ हम पर टूट पड़ा। दादा दादी ने हमें और हमारी अम्मी को घर से खाली हाथ धक्के देकर निकाल दिया। हमारी अम्मी माँ बाप की इकलौती थी, नाना नानी का भी इंतकाल हो गया था। अम्मी बताती हैं कि ख़ानदान वालों ने नाना नानी के मरने पर घर पर कब्ज़ा कर लिया और हमारे पास अब रहने की कोई जगह ना थी। अम्मी और हम सड़क के किनारे बैठे रो रहे थे कि अल्लाह ने मदद की, अब्बू के एक दोस्त उधर से गुजरे, उनकी निगाह हम पर पड़ी, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों हो और फिर क्यों रो रही हो? अम्मी जान ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो हमें अपने साथ घर ले गए, 1-2 दिन रखा, उन्होंने किराए पर ये घर ले दिया। अम्मी जान ने अपने कानों के कुंडल और पैरों की पाजेब उतार कर दी और कहा, इस सब को बेचकर 1 महीने का किराया दे देना, गैस का छोटा सिलेंडर और ज़रूरी सामान जैसे लोटा बाल्टी वगैरह है ये खरीद कर, और कुछ राशन वगैरह का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने सारा सामान खरीद दिया और कुछ पैसे जो बचे थे वो अम्मी को दे दिए। 1 महीना कट गया, सामान भी ख़त्म हो गया, पैसा भी ख़त्म। 2 दिन हम दोनों भूखे प्यासे पड़े रहे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। हमने अम्मी से कहा, हम सड़क पर जाकर कुछ मांग लाएं, अम्मी ने मना कर दिया। दोपहर में अम्मी की जब आँख लग गई तो हम चुपके से बाहर निकल आए, पास में मस्जिद थी, जोहर की नमाज़ हो रही थी, हम मस्जिद के दरवाज़े पर बैठ गए। हमसे मांगना तो आता नहीं था, नमाजियों के आगे हाथ फैला दिया, सब ने कुछ ना कुछ दिया। पहले दिन की भीख में हमें 40 रुपये मिले, खाना खरीद कर घर ले आए। अम्मी जान दरवाजे पर परेशान खड़ी थी, हमें देखते ही बरस पड़ी। हम उनको लेकर अंदर आए, उन्हें सब कुछ बता दिया और किसी न किसी तरह उनको खाना खिला दिया। इस तरह हमने भीख मांगनी शुरू की। आप घर चलिए बेटा, आज हमें काम है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशात मरियम है। आप घर चलिए वरना अपना नोट ले लीजिए। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अम्मी की पिटाई से डर रही हो तो हम इसके बदले छोटे नोट दे देंगे। मुझे घर का पता बता दो, मैं कल खुद ही तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। पता तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं कल को इसी टाइम इसी जगह मिल जाऊंगी। खुदा हाफिज़ कहकर निशात घर पहुंची, दिल में खुश हो रही थी, लेकिन घर पहुंचते ही पहुंचने पर उसकी सारी खुशियां काफूर हो गईं। अम्मी ने डांट लगाई और तमाचे लगाए, बता ये पैसे किसने दिए? ये निशात ने सब कुछ बता दिया। बेटा, हर ऐर गैरा को अपनी परेशानी या दुख नहीं बताते हैं, इस तरह हमारी रही सही इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। अम्मी, मुझे और मान लीजिए, पर बाबूजी को कुछ ना कहिए। अब्बू के बाद आज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं बड़ी होती तो उनको भाई बना लेती, पर मैं बच्ची हूँ तो मैं उन्हें अपना। खामोश, अम्मी की डांट ने उसकी बात को काट दिया। कान खोल कर सुन ले निशात, बेटा अम्मी से इजाज़त लेकर बाहर आओ। इस आवाज़ ने अम्मी की बात को काट दिया, अम्मी ने उसे इजाज़त दे दी। निशात बाहर आई, दोनों लोग सार सुर्ख हो रहे थे, आंखों से गंगा जमुना की धारें बह रही थीं। निशात को इस हाल में देखकर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। तुमसे रुख्सत होकर मैं जब चला तो मुझसे नहीं चला गया, हमें एहसास हो गया कि

0: शायद तुम्हारी बात सच हो, मगर यहाँ तक पहुँचने से पहले ही सब कुछ हो गया। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, कहती हैं मैं अपनी निषाद को बहुत पढ़ाऊँगी, कामयाब डॉक्टर या बड़ा अफसर बनाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़े। अल्लाह तुम्हारी अम्मी के ख्वाब को पूरा करे, आमीन। आप अंदर आ जाइए। शुक्रिया। निशात सलीम को लेकर अंदर आई। एक बोसेदार सी चटाई के अलावा घर में कुछ नहीं था। एक तरफ निशात की अम्मी का हुस्न, शाइस्तगी, सलीका और अंदाज गुफ्तगू, मालूम होता था हुस्न का शाहकार लखनवी तहजीब की गंगा में नहाया हुआ और गुर्बत में यहाँ नमुदार हुआ है। इसने साबित कर दिया कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। आप हमें माफ़ कर दें, आपने कौन सी खता की है? हमने गुस्से में आपको न जाने क्या क्या कह दिया। आपने माँ का फ़र्ज़ अदा किया है, हमें यकीन हो गया कि आपकी तरबियत में रहकर निशात यकीनन आपके सपने को पूरा करेगी, मगर मगर क्या, इस सपने को पूरा करने के लिए आपको अकद सानी करना पड़ेगा। मैं एक डायन हूँ, डायन से कौन अकद करेगा? मैंने अपने सुहाग को निगल लिया, उसकी सज़ा में भीख के टुकड़े खा रही हूँ। इस जिल्लत की ज़िंदगी को मैं उसी वक्त ख़त्म कर देती मगर जब मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था, मगर मैं निषाद का ख्याल करके खामोश रही। निषाद के लिए मैं ज़िंदा रहूँगी। मैं डायन हूँ, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी मेरे लिए बंद कर लिए। मैं कई घरों में बर्तन मांजने के लिए गई मगर उन्होंने साफ कह दिया हमारे घर न आना। सर्विस के लिए अपनी असमत और अफवत को रिश्वत की बलि वेदी पर चढ़ाना मैंने पसंद ना किया, इसलिए सर्विस को भी ठोकर मार दी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि गम की सारी सिया रात ख़त्म हो जाए और खुशियों की सुबह यकीनन नमूदार होगी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के अख्तियार में है। हमारे दुनिया में आने से पहले ही उसने हमारी मौत का वक्त और जगह और मौत किस तरह होगी सब कुछ लिख दिया है। इसे कोई ना काट सकता है ना बदल सकता है। फिर आप डायन कैसे हो गई? आप सब्र करें और निकाह के बारे में संजीदगी से सोचें, अपनी नशात के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचें। निकाह अपने आप नहीं होता, फिर एक बेवा का निकाह। मेरा अपना कोई भी नहीं है जो भाग दौड़ करे, मैं खुद किसी के घर में तो नहीं घुस सकती। अगर किसी ने अपने किसी फायदे की खातिर मुझ जैसी अभागन से निकाह कर भी लिया तो इसकी क्या जमानत कि वो निषाद को अपना लेगा, इसे बेटी जैसा प्यार दे सकेगा? अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी निषाद वक्त से पहले ही मर जाएगी और मैं कदम कदम पर मरूंगी। इससे बेहतर है यह है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अगर हो सके तो छोटी मोटी नौकरी दिला दें, नौकरी के चक्कर में ना पड़े, अल्लाह पर भरोसा रखें और निकाह कर डालिए। आप ही निषाद को अपना लीजिए, मुझसे निकाह कर लीजिए। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं आवारा हूँ या चीटर हूँ, जुआरी या शराबी हूँ, चोर या कातिल हूँ, फिर भी आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। जो शख्स एक यतीम बच्ची को उसकी माँ की मार से बचाने के लिए उसके घर तक पहुँच जाए, उस यतीम बच्ची की आँख में आंसू देखकर तड़प उठे, वो कभी बद किरदार नहीं हो सकता। आपको पता नहीं कि निशात तो ये फैसला पहले ही कर चुकी थी। उसने कहा था कि अगर मैं बड़ी होती तो मैं बाबूजी को भाई बना लेती, मैं छोटी हूँ इसलिए बाबूजी को मैं अपना अब्बू बनाऊंगी। वक्त का फैसला मेरा नहीं है, निषाद का है। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हुस्न जमाल का पैकर, ईसार और खुलूस की देवी, ममता का मुजस्समा, उसके अलावा दुनिया की ठोकरों और दिल जिगर को पाश पाश करने वाले, तानों को सहन करने वाली, भूख और प्यास में अपनी असमत और आफत को बचाने वाली एक मजबूत चट्टान हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी। नेज उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की सुन्नत पर अमल करने वाली एक मोमिना से हमें अक्त करने की सआदत हासिल होगी। हम अपनी निषाद के मरहूने मिन्नत हैं कि उसने हमें यह अजीम तोहफा दिया। आज से 10 दिन बाद हमारा अक्त होगा। आप हमारे साथ चलें, अपनी पसंद के कपड़े और जेवरात ले लें, हम फिर दूसरे इंतजाम में लग जाएंगे। हमें सारा इंतज़ाम खुद ही करना है, मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी दुर यतीम हूँ और ये यतीमों का संगम है। अल्लाह परवान चढ़ाए, आमीन। चलिए आप खुद ही खरीद लीजिएगा, नहीं आप चलें, हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। वह हाथ धोकर तीनों बाजार के लिए रवाना हो गए।
1: यतीमों का संगम, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे ये अफसाना, जिसके अफसाना निगार थे मोहम्मद यामीन बरकाती। इस अफसाने के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं अदब की एक और खास सिंफ यानी शेर व शायरी की जानिब, जिसके बगैर आप भी समझते हैं कि प्रोग्राम अधूरा सा रहता है। तो ताखेर ना करते हुए آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس حسین محفل میں سلسلہ کلامی شاعر کے تحت۔

0: कलामी शायर के तहत अभी आप समाअत फरमा रहे थे अब्दुल नईम खां से उनका कलाम। सामिन, इसी के साथ अब आकाशवाणी के रामपुर मरकज से अपनी मेजबान आयशा राहत को दीजिए इजाजत।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:50 हुए हैं। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं सतीश चंद्र यादव वसाथी। इनके स्वर में देवी गीत सुने, उसके पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: संदेश हुआ पूरा। लोक संगीत में आपका स्वागत। कलाकार हैं सतीश चंद्र यादव वसाथी। सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

सतीश चंद्र यादव और साथियों के गाए इस सोरठी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 10:25 प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

आजा नचले फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग सुनिधि चौहान की आवाज़, पीयूष मिश्रा के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।

0: अब आइए सुनते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना। आवाजें हैं लॉय मेंडोसा और साथियों की।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। आएगी, आएगी, आएगी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में एक बार आपका पुनः स्वागत। आइए सुने गुलाम अली की आवाज में बेवफा फिल्म का ये गाना।

आइए सुने अमीन साबरी और फरीद साबरी की आवाज़ों में सिर्फ तुम फिल्म का गाना, और यही है कार्यक्रम झनकार की आखिरी पेशकश।

सिर्फ तुम फिल्म के स्कोर वाली के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11:01 और 23 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

नमस्कार और श्रोताओं, आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बनारस सहित बहुत सारे इलाकों में अभी भी बहुत तेज भीषण गर्मी के हालात हैं, तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें, हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। आज का ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905519981, 7905519981। आज इस कार्यक्रम में शामिल फिल्मों के नाम हैं आहुति, क्रोधी, दामाद, बनफूल, सच्चा झूठा और वो दिन याद करो। आहुति, क्रोधी, दामाद, बनफूल, सच्चा झूठा और वो दिन याद करो। सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें और उसके आगे पीछे कोई और बात न लिखें, अपना नाम और जगह का नाम ही लिखें और एक स्थान से ही संदेश एक भेजें और उसमें 3-4 श्रोताओं के ही नाम भेजें। बिल्कुल आखिरी वक्त में संदेश न भेजें, शुरुआत में ही भेज दें और फिर इंतजार करें, चाहे आपने किसी भी फिल्म के लिए संदेश भेजा हो, क्योंकि होता यह है कि शुरुआत की फिल्म के लिए अगर 150-200 संदेश आ जाते हैं तो उन्हें एक बार ही शामिल अगर किया जाए तो आधे घंटे उसी में गुजर जाएंगे। तो सिर्फ इंतजार करें, आपका नाम जरूर शामिल होगा। यानी 11:30 तक अपने संदेश भेज दें 7905519981 पर। आहुति, क्रोधी, दामाद, बनफूल, सच्चा झूठा और वो दिन याद करो, बहुत सारी फरमाइशें आ गई हैं और हमारे बहुत सारे श्रोता संदेश भेजने के बाद फिर दुआ सलाम या कुछ और लिखते हैं तो उससे फिल्म का नाम छुप जाता है, ये हम आपको बता दें। साथ ही बता दें कि कल आप कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश के लिए हमसे बातें कर सकते हैं सुबह 10:10 से। 0542-222-1052 नंबर पर आपका इंतजार रहेगा और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे दोनों ही चैनलों के मुतालिक यानी उसके बारे में, कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय जरूर हमें भेजते रहें pkldaiarvaranasi@gmail.com पर। और जो श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनमें से बहुत सारे श्रोता वहां पर फरमाइशें भेजते हैं, ये आपको बताएं कि वहां पर जो आती हैं फरमाइशें वो हम कार्यक्रमों में शामिल नहीं करते। हमारे यहां से बुधवार और गुरुवार को जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस होता है मेल पर आधारित, उसकी मेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। तो सिर्फ फरमाइश इसी मेल आईडी पर आप कभी भी भेज सकते हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म आहुति के इस गीत के साथ। बहुत सी फरमाइशें आई हुई हैं, किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आहुति फिल्म का गीत युगल गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। फरमाइशें आप सबकी हैं। मुरादाबाद दुल्हापुर के हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू और सुरेश। गांव गहमर पकड़ी तर गाजीपुर के श्रोता हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल और शिवांश। स्टेशन रोड जमानिया के हमारे श्रोता हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार और अजीत कुमार। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। मारहरा दरवाजा एटा से ये संदेश नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी और सुहेल हसन का है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल और विलिस डिकेस्ट्रो हैं जनकपुरी सहारनपुर के श्रोता। ये फरमाइश प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा की आई हुई है छत्तीसगढ़ पलारी से। हमारे श्रोता हैं मोसी अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी और मुश्ताक अंसारी वाराणसी से। गमरिया जमशेदपुर से हमें सुन रहे हैं रोहन जायसवाल, आर्य मुराहू और देवंती जायसवाल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और परिवार के सदस्य। दतरंगी भाटापारा के श्रोता हैं हीरामणि वर्मा और पारस मणि वर्मा। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन गुड़िया की फरमाइश है। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा और चैतन्य मस्किन हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। हरिश्चंद्र उपाध्याय के करहिया लोहता वाराणसी से हैं। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा और आयुषी की फरमाइश आई है खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम कुमार सुरलकर। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि और आकाश प्रजापति हैं कोरौता वाराणसी से। पदमपुर गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन का व्हाट्सएप संदेश।

ये संदेश है। इमृति यादव का ग्राम बरठी सकलडीहा चंदौली से। नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन है पलारी छत्तीसगढ़ के श्रोता। आलिया खान नाजिया खान सादिया खान है कस्बा कला शाहजहांपुर से। रईस खान साबिया खान अनस खान शकील खान दानियाल खान की फरमाइश फूले नगर अम्बीवली मुंबई महाराष्ट्र से आई हुई है। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म का नाम है क्रोधी। बहुत सारे श्रोताओं ने इसी गीत के लिए हमें संदेश भेजे हुए हैं यानी फरमाइशें भेजी हैं। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, बाकी फिल्में हैं दामाद, बनफूल, सच्चा झूठा और वो दिन याद करो, लेकिन अगर आपने संदेश भेज दिया है तो सिर्फ इंतजार करें और दोबारा मैसेजेस न भेजें। क्रोधी फिल्म के इस गीत के लिए फरमाइशें आप सबकी आई हैं। आप हैं अनिल, मानसी, गौरव, कविता मदान, मिलन सिनेमा रोड, नई दिल्ली, करमपुरा से। आपने लिखा है फूल है गुलाब का खिलता रहेगा, इसी तरह प्रसारण है AIR वाराणसी का चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया की फरमाइश आई है वारंगल से। ईदगाह रामनगर से हैं सोनू अंसारी, लंबे बाबू, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी की फरमाइश महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से आई हुई है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसुतासु और नव आनंद हमें सुन रहे हैं पाकुड़ झारखंड से। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहिनी हैं चोहलदा बागपत के श्रोता। विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना, राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति हैं जलालीपुरा वाराणसी से। लछनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, सईद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम की फरमाइश कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। आप हमारे श्रोता हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख और सर्व देशमुख कालेगांव जाफराबाद से। ये जो पता है और नाम है थोड़ा संक्षेप में लिखें और कोई उसके साथ संबोधन या ऐसा कुछ न लिखें, नाम शामिल हो जाए हमारी कोशिश रहती है। मुंदीचक भागलपुर से मैं सुन रहे हैं दिलीप कुमार सोनी, शुक्रिया आपका। रामसकल चौधरी, मौनी बाबा धाम, चोचकपुर बाजार, गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं। साथ में हैं इनके भास्कर दुबे, दिनेश चौहान, उमेश चौहान, अदिति चौहान और मनीषा चौहान की फरमाइश ली है दिगर जामनेर जलगांव से आई हुई है। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी है रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से। जलालाबाद वेस्ट के श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन। बैंजो मास्टर सुनील यादव हैं साथ में शिव कुमार यादव, तनिष्का और नौबत यादव, अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। चौरादा बाजार, नवा पारा अभ्यारण्य, बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर और ज्योति ठाकुर। संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह की फरमाइश उमरिया मध्य प्रदेश से आई है। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण और संस्कृति। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी और उज्जवल दास मानिकपुरी, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से। रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा और सौरभ शर्मा। हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता नथाना पंजाब से। धनवंतरी नगर जबलपुर से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह और रितु सिंह। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद से। ये फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी और लवली। सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर शाह।

कौशल शाह हैं, पद्मा टॉकीज नेपानगर से, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर और साजिद शाहिद की फरमाइश, वलीदपुर मढ़हा मऊ से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि अनुरागदीप और भागल या भगल यादव। ग्राम चकपुटही असनाव बाजार भदोही से गिरधारी लाल यादव, मिंटू गौड़, कमलेश, देनानाथ दुबे और भोलानाथ यादव। कलानौर से नरेंद्र शर्मा और किरण शर्मा की फरमाइश। प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है दामाद। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, योगेश के बोल, हेमंत भोसले का संगीत।

जी हाँ, जिंदगी के सफर में आप प्यार में दीवानगी रखें, लेकिन हमारे कार्यक्रमों के प्रति भी रखें। और आपको बता दें, कल आप हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में हमसे बातें कर सकते हैं सुबह 10:10 से। और अब जो गीत आपने सुना दामाद फिल्म का था, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, फरमाइशें आप सबकी आई हैं। आशीष कुमार हैं महरेव जौनपुर के हमारे श्रोता। फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा और विशाल खेड़ा की फरमाइश। शादुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। पूनम यादव, कुसुम यादव मोकलपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं। ये कहें पूनम जी कि सिर्फ संदेश भेज करके वेट किया करें, क्योंकि और फिर आपने ये 4-5 बार में भेजकर ये पूरी बातें लिखी हैं, तो एक बार ही भेजें वरना वो संदेश पीछे होता जाता है। अस्तुपुरा मऊ से हमें सुन रहे हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। ये फरमाइश है संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, चौखंटी हाथी बाजार वाराणसी से। राजधानी रायपुर से हमें सुन रही हैं नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। मलेरकोटला पंजाब से हैं मुस्कान खातून, साबिया खातून और रौनक खातून। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता। निमनाबाद जिंद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। फाजिल्का से ये नाम शामिल हो चुके हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल मेहरा की फरमाइश है। आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। बर्फ गांव नांदूरा से शिवानी उगले और राहुल उगले। भोला यादव धानापुर चंदौली से आपकी फरमाइश आई। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी हैं अहमदनगर बजडीहा से। इकबाल अंसारी, मल्लू अंसारी, सलीम आजाद, अजीजुर रहमान अंसारी और ऐनुल हक अंसारी बजडीहा वाराणसी से आपकी फरमाइश आई। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा हैं ददरेगी से। दिलदारनगर गांव पश्चिम मोहल्ला काजीपुर के श्रोता हैं जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव और दीनानाथ सिंह यादव। गुरसंडी मिर्जापुर से त्रिलोकी पंडित, अनिल पांडे, हार्दिक, विराट, हर्ष, राघव और मुकुल पांडे। जमालपुर गोगरी खगड़िया से सिकंदर कुमार तांती, यदुनंदन तांती और गुडलक कुमार। ऊपरकोट मोहल्ला चखुंटी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी। अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख सांगली के जत शहर से। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और वर्षा सुमन। सदर बाजार जबलपुर से हैं कमल सिंह, विमल सिंह, संकल्प और ज्योति सिंह। शानू, आर अश्विन, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हैं शिवराजपुर चुनार से। मुश्ताक सुलेमानी का नाम पहले भी हमारे पुराने श्रोता हैं शामिल हो चुका है। और शाहिद सद्दू, लंबे बाबू खान, सलीम आजाद वाराणसी के आप श्रोता हैं। डोमेंद्र नेताम और गंगेश्वरी नेताम हैं मुंडा टोला डोंडी लोहारा बालोद से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा हैं पिपरलोड सरगांव से। जय जोहार आपको भी। दिग्दर्शन और कविता गोंड मेरठ कैंट के श्रोता हैं। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूडत। श्रोताओं, वक्त 11:32 और 21 सेकंड का है। आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। कल आप हमसे बातें कर सकते हैं कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में सुबह 10:10 से।

बनफूल फिल्म का गीत था। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, फरमाइशें आप सबकी। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज हमें सुन रहे हैं नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन और प्रतीक्षा की फरमाइश कुम्हार गली कोलगांव से आई हुई है। सतीश शर्मा है चंडीगढ़ से। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद अजीत वर्मा है बठिना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश संबलपुर कांकेर से आई है फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव की। देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू और उमाबाई भोईना पार लाटा बोर्ड बालोद छत्तीसगढ़ से। पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु रिधान और तुलसी मस्कीन। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान हैं जसपुर उत्तराखंड से। हेमंत सिंह, अमिताभ सिंह, अजय सिंह, गणेश त्रिपाठी, प्रदीप कन्नौजिया, पटेल धर्मशाला, तिलियाबाग वाराणसी से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। अमितेश कुमार तिवारी हैं करनई बलिया के श्रोता। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी। अब आप हैं जौनपुर से ऋषु मौर्य। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता की फरमाइश है पोफाली यवतमाल से आई हुई। निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू की फरमाइश है धनौरी तेलीवाला से। अमित पंवार और रेणु ढाका पंवार हैं हिसार हरियाणा के श्रोता। खुलूस आदाब के साथ प्रोग्राम में हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद, दादा बाबू रोड, गिरिडीह, झारखंड से। रुक्मिनी बघेल, साहिल भारती बघेल हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। आप हैं रमनदीप परिहार, राजदीप परिहार, अपर्णा परिहार, सुधा गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। कटरा मुबारकपुर से हमें सुन रहे हैं जावेद अख्तर अंसारी, निगत परवीन, नुसरत परवीन और सलीम जावेद। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली, निशा और घर के सदस्य। ये मगनपुर किस जिले में है जरूर हमें बताइएगा। एडवोकेट वारिस अली खान जुड़ गए हैं इस्लामुन निशा, शकील अहमद और शहनाज खान साथ में दानिश खान के साथ। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया की फरमाइश झज्जर हरियाणा से आई हुई है। राहुल नगर अमरावती से, सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय और प्रसिद्धि। सदर बाजार मारवाड़ से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान की फरमाइश है। मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान और इसरार हैं मुरादाबाद दुल्हापुर से। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम और अक्षय सेन। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु खोरवाल और गीतिका की फरमाइश उत्तम नगर दिल्ली से। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू, माया, शिवांश, चंद्रकुला, देवीदास और हरिभाऊ। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश और प्रियंका बराड़ा अंबाला हरियाणा से। ये संगीत बता रहा है फिल्म का नाम सच्चा झूठा है। किशोर कुमार की आवाज, इंदिवर के बोल, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है।

0: जी हाँ, दिल को देखें, चेहरा न देखें, फिलहाल हम देखें कि किन श्रोताओं ने इस गाने के लिए फरमाइशें भेजी हैं। पटेल नगर मुगलसराय से हमारे श्रोता हैं सुनील कुमार सिंह। परवेज अहमद की फरमाइश शुक्लपुरा वाराणसी से आई हुई है। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल।
1: जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे ऐसे नहीं।
0: रमन शंकर यादव, उमेश पांडे राशिपुर कोठिलापुर सिरकोनी जौनपुर से हैं। बेरेडी से अर्जुन गावनेकर, धीरज सव्वा शेरे और चंचल ढोमने की फरमाइश आई है। आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत। छत्तीसगढ़ रायपुर के श्रोता हैं चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद इमरान और इशरत परवीन। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तन्नू करमरकर की फरमाइश बेरेडी से आई है।

अभिजीत गोहाणकर, राहिर, सरिता गोहाणकर, प्रणीता सिद्धांत गोहाणकर और प्रिंस की फरमाइश, मेहरखेड़, उमरखेड़, मेहरनगर, महाराष्ट्र से। महावीर कंबोज, गोल्डी कंबोज, अंकित कंबोज, विपुल कंबोज हैं औरंगाबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के श्रोता। और आप हैं सुकांत कंबोज, चिनू कंबोज, अतिक्ष कंबोज, देहरादून, उत्तराखंड, उत्तराखंड से। कोली नांदेड़, महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार और साई गायकवाड़ की फरमाइश है। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी, मखदूम नगर, बजड़िया, वाराणसी से। हमें सुन रहे रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, शुक्रिया मेहरबानी के साथ, राजधानी नई दिल्ली से। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी हैं बाजार रोड मुंगीसापुर के श्रोता। कमल बालूजा।

बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक हैं मजनू कटीला दिल्ली से। जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। अर्चना कुमारी, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी हैं मुजफ्फरपुर बिहार के हमारे श्रोता। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव और सार्थक नामदेव, शिवराम प्रजापति, गायत्री प्रजापति, शांतनु और रिया प्रजापति हैं गोसाईगंज सिकरारा बाजार जौनपुर से। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष बाबा कुटीर रायगढ़ से। क्राम बहुवरा, दिलदार नगर गाजीपुर से अक्लू राम, केदार राम और दीनाना सिंह। समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल, बुलढाना महाराष्ट्र से आपकी फरमाइश है। देवी सिंह नेताम, राजन सिंह नेताम, दक्षप्रिया और गीत सरगम नेताम है अमा खोड़रा रेंगाखार से। पुरानी भिलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शहना शहनवाज और उनके परिवार के सदस्य। सुभाष योगी, राजू मिगलानी, डब्बू और बब्बू हैं कृष्णा कॉलोनी हासी से। राजू चौधरी नगदिलपुर, रेवतीपुर, गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं, शुक्रिया आपका। अच्छे लाल बिंद बागी गाजीपुर से। शाहकुटी मुगल सराय से सोनू जायसवाल, मंजू डब्लू और माया जायसवाल। रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश हैं छत्रपति संभाजी नगर से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। स्टेशन रोड जमानिया से एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल। ग्राम जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज और उनके परिवार के सदस्य। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता नारी पचदेवरा गाजीपुर से। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज सुंदर और सुमन जायसवाल। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम है वो दिन याद करो, मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

वो दिन याद करो फिल्म का ये शीर्षक गीत मोहम्मद रफी की आवाज। फरमाइशें आप सबकी आई हुई हैं अनिल कुमार गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंग्रिम गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड है पहाड़ी अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 वाराणसी के हमारे श्रोता। जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। धमधाग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका और आदित्य जंघेल, साथ में अंजलि जंघेल भी। ये फरमाइश है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब की आई हुई। विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी और सुशीलपुरी हैं फतेहगढ़ मोहल्ला लुधियाना से। नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हमें सुन रहे हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा। नाहिद अंसारी, राशिद अंसारी, साजिद अंसारी नेवादा मुबारकपुर आजमगढ़ के श्रोता हैं। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा हैं खरगोन सनावत से। ये फरमाइश जाकिर हुसैन अंसारी, मतीन अंसारी, सरफराज अंसारी, मोबिन अंसारी, मोहसिन अंसारी की है कोटवा वाराणसी से आई हुई। राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग हैं बटिंडा रोड मंडी डबवाली से। गांव हाणीखेड़ा सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक और सचिन शर्मा। हदगांव महाराष्ट्र से शंकर गिरबिड़े और दिलीप गिरबिड़े। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका और अनिष्का। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन और पलक कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं। ये फरमाइश आई है सलोनी कुमारी की नौपुरवा चोचकपुर गाजीपुर से। काली माता मंदिर दिलदारनगर गांव से हैं किशुन सिंह कुशवाहा, हृदय नारायण गुप्ता और छविनाथ शर्मा। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार और डैनी पवार की फरमाइश। और आप हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा मऊनाथ भंजन से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की फरमाइश रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से आई है। ये संदेश है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान और तरुण चौहान का। विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल और विवेक रामगंज खंडवा से हैं। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। और श्रोताओं आपको बता दें कि अब तक यानी 11:56 और 38 सेकंड तक प्राप्त जो भी संदेश हैं वो सभी शामिल हो चुके हैं और बिल्कुल अभी ये जो संदेश आया है ये पहले भी शामिल हुआ है। बहरहाल दीदानगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव और कयूम शाह। कल आप हमसे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में बातें कर सकते हैं और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। वहां फरमाइशें न भेजें pkld@varanasi.gmail.com पर। वो दिन याद करो के गीत को याद किया है सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल और पूनम जायसवाल ने। रामनगर कदमा जमशेदपुर से हैं विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल।

शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। चूंकि और संदेश नहीं है तो राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का भी नाम इसी संदेश में है। मऊनाथ भंजन से मुबारकपुर पुरानी बस्ती से अभी संदेश आया शाहिद जमाल, अनवर जमाल, आसिफ जमाल का। और ये संदेश है मुबारकपुर उची तक ये आजमगढ़ से बिल्कुल आखिरी वक्त में आया हुआ दिलशाद हुसैन का। शुक्रिया और इस्तकबाल, स्वागत आपका। तो अब चूंकि कोई संदेश आपका नहीं है, आपको बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। और कल आप बने रहें कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में, फोन करें और बता दें श्रोताओं को कि कल जो रिकॉर्डिंग यानी बुधवार को होती है वो शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच प्रसारित होती है। और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम आपकी प्रतिक्रियाओं का रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है। हमारे प्रसारण आपको आकाशवाणी वाराणसी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध रहते हैं चुनिंदा प्रोग्राम, वहां भी सुने, जुड़ें और उस पेज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ जापान की चाय

0: परंपरा केवल चाय पीना नहीं, लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
1: जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
1: जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
1: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
1: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई।
0: जी,
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओ, इन 4 सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
1: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है। बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
1: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही

0: कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
1: आ गए भैया।
0: हाँ।
1: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
0: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गए।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाँ।
4: हर गोविंद भाई,
3: हाँ?
4: तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है। अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं।

पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: हाँ, घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवाला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो?

0: कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
1: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका।

0: से सब गिर गई। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैर लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ
1: ये रहूंगी।

0: In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए
9: 0542227658।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें
10: 0542227658।
4: कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की गाई गजलें। पहले सुनिए कतील राजस्थानी का कलाम।

तुझको खत लिख के तकिए में छुपा देता हूँ, अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूँ। गुमनाम मलिक का ये कलाम अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह के स्वर में। और अब जो गजल आप सुनेंगे उसके शायर हैं कतील राजस्थानी।

दिल ने किया था याद, अभी आप आ गए और हम इस प्रोग्राम के उस मुकाम यानी पड़ाव पर आ गए हैं कि इसके खात्मे का वक्त है, यानी सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आखिरी गजल थी कतील राजस्थानी की, फनकार थे भूपेंद्र सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 12:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं मुराद बानो का उपशास्त्रीय गायन। आइए सुने इनकी गाई राग मिश्र पहाड़ी में ठुमरी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुराद बानो की गाई राग मिश्र पहाड़ी में ठुमरी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे

0: हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ब्लेमिंग नेबर्स फॉर इट्स ओन फेलियर्स इज एन ओल्ड पाकिस्तानी हैबिट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मुस्कान, पिता का नाम अमित कुमार, ये होलिका मैदान खोजवा भेलूपुर की निवासी हैं और 13 मई 2026 से अपने घर से लापता हैं। मुस्कान की आयु है 15 वर्ष, कद 5 फीट के करीब, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था टी शर्ट और जीन्स। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो प्रभारी चिल्ड्रेन मिसिंग सेल पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। अगली सूचना, सौरभ पटेल, पिता का नाम सरोज पटेल, ये सगुनहा फूलपुर वाराणसी के निवासी हैं और 8 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता हैं। सौरभ पटेल की आयु है 6 वर्ष, कद 60 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो प्रभारी चिल्ड्रेन मिसिंग सेल कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस को सूचित करें। विवान, पिता का नाम निमेश कुमार सिंह, ये 80 घाट भेलूपुर वाराणसी के निवासी हैं और 14 मई 2026 से लापता हैं। विवान की आयु 17 वर्ष, कद 5 फीट 10 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था काले रंग का लोअर और नीले रंग की टी शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो प्रभारी चिल्ड्रेन मिसिंग सेल कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में डॉक्टर आरपी शास्त्री का वायलिन वादन आप सुनेंगे। खेल दर्पण कार्यक्रम रात में 10 लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। अंजुमन प्रोग्राम होगा रात में 9:30 पर। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला आज आर्थिक विकास विषय पर केंद्रित होगी, ये 9वीं कड़ी है। आप सुन पाएंगे रात में 8:10 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 कलाकार होंगे उषा टंडन और राहत अली। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:00

30 मिनट पर बातचीत का विषय होगा असिंचित दशा में खेती की उन्नत तकनीक। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे सतीश चंद्र यादव और साथ ही इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, क्या आप जानते हैं, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में ब्रज गीत सुनवाए जाएंगे, कलाकार होंगे सुरेश गुप्ता और कुमारी रत्ना भौमिक। सुहाने तराने कार्यक्रम होगा 2:30 पर, प्रस्तुति आशुतोष की होगी। 1:15 पर रंगनैया कार्यक्रम में आज सुरभि जायसवाल से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत का विषय होगा कामकाजी महिलाएं और पारिवारिक संतुलन, साथ ही चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का इफ्तिताह किया। इससे देही और आधे शहरी इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
1: एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में फायर और इमरजेंसी खिदमत डिपार्टमेंट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रियासत में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
0: एक दीगर मीटिंग में वजीर आला ने हैंडलूम और महकमे कपड़ा, सनत और खादी और ग्रामोद्योग महकमे का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत लिबास और मलबूसात शोबे में सरमायाकारी, प्रोडक्शन और रोजगार के नजरिए से मुल्क की सफे अव्वल रियासतों में अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। दरियसना वजीर आला ने डिप्टी रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावार तरीके से पासपोर्ट खिदमात मराकज की तर्ज पर फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला ने कल लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन महकमे के कामों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती 2025 के तहरीरी इम्तिहान का आज दूसरा दिन है। यह इम्तिहान दो मीटिंगों में आज भी मुनक़िद किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ और आगरा समेत सभी जिला में बनाए गए इम्तिहान मराकज पर CCTV की निगरानी में यह इम्तिहान मुनक़िद हो रहा है। तकरीरी बोर्ड मुनसिफाना और नकल से पाक इम्तिहान कराने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया के साथ पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वाज़ह रहे कि तकरीरी के अमल के तहत कुल 32,679 ओहदों के 28,86,797 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त की थी। इम्तिहान के लिए पूरी रियासत में 1,183 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क्यादत में गुज़िश्ता 12 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बुनियाद पर हिंदुस्तान में काबिले जिक्र तरक्की हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी हुकूमत के 12 सालों के मुख्तलिफ शोबों में की गई कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम सेहत खिदमात के शोबे में हुकूमत की कोशिशों की जानकारी दे रहे हैं।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक

0: आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
1: वजीर बनाए सेहत और कुनबे बहबूद जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में वजीर आजम महफूज जिचगी मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम का खसूसी मकसद बेहद जोखिम वाले हमल का जल्द पता लगाना और फौरी इंतजाम करके माँ और बच्चे की शरेआमवाद को कम करना है। इस प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में जिचगी की सेहत खदमात को मजबूत बनाने में मदद की है। कौमी इम्तिहान एजेंसी एनटीए ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहरों की फेहरिस्त जारी कर दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रियासत में तेज धूप, शदीद गर्मी और उमस से अवामी जिंदगी मुतासिर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मशरकी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में, खसूसी तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल में मौसम खुश्क रहेगा और शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 31 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहिन लोगों के मीना का नमस्ते, और साथे में चंपा बहिन तोहरों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो मीना बहन, तहूं के नमस्ते और बहिन लोगन के भी नमस्ते।
0: और हो चंपा बहिन, देखत हो ना कि मौसम भाई कैसे, देखा कभो धूप होता तो कभो बदरी हो जाता, और देखा भाई इस समय धूप इतना तेज होता जब होता ना,
1: हाँ
0: कि भाई ऐसा ध्यान रखे कि अगर जे घामे निकला था तो घामे से घमायल आए के जौन है कि पानी ठंडा ना पी ले, नहीं तो देखा तबीयत भी खराब हो जाता।
1: ई तो बात सही कहा था, मौसम तो हेर फेर चलता हला। बाकी यही में देखा जोन लेकन बच्चन का जोन पढ़े को जुनून हला, लोगन सोचत हन कि हम कितना आगे बढ़ जाए पढ़त पढ़त ही। तो यही सब के देखते हुए सरकार अल्पसंख्यक छात्रन खातिर ना प्रधानमंत्री के नया 15 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार के जरिए अल्पसंख्यक के कल्याण खातिर शुरू करल गया हौ। ये एक तरह का व्यापक कार्यक्रम है। एकर मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रन के समान अवसर प्रदान करब हौ और उनका शैक्षिक स्थिति में सुधार ले आई हौ और उनके आकर्षित आर्थिक रूप से ना सशक्त बनाई भला।
0: भाई देखा अपने समाज में जौन अल्पसंख्यक भैया बहनी लोगन हुवन ना, उ लोगन के समाज से के मुख्य धारा से जोड़े बदे ई कार्यक्रम चलावल जाता सरकार द्वारा, कि उ लोगन भी आपन आर्थिक विकास कर सके और ही अपने व्यक्तित्व के निखार सके, अपन आर्थिक स्थिति सुधार सके, आगे बढ़ सके, समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, ए बदे ई कार्यक्रम चलावल जाता। एमन देखा कई तरह का छात्रवृत्ति योजना भी शामिल है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप, मदरसा आधुनिकरण, आर्थिक और रोजगार के अवसर भी मन कई प्रदान करल जा रहा सरकार की ओर से, और कौशल विकास जौन है कि वो युवा लोगन के कौशल सिखावे बदे, उनके कौशल विकास बढ़ावे बदे, उनका जौन की काम करे का क्षमता है, जौन उनके अंदर भाई प्रतिभा है वो निखर के बाहर आवे, ये बदे भी कई तरह का काम कर जाता। तो इमन उनके जुड़ के जानकारी ले के ये अवसर का लाभ उठाए सके।
1: आ ए एक बात और बता दे, ई जोन लेकिन लेकिन लड़कियों देखा आगे

0: रहता है ना
1: भाई, लइका चाहे लड़की सब के
0: हाँ
1: भाई समाज में आगे बढ़ा था,
0: एमन
1: सब कोई अपन जो ना कि योगदान पूरा समाज में दे था।
0: एमन देखा ना, जोन अल्पसंख्यक जोन लड़कीन है ना, इन्हों खातिर भी विशेष रूप से जैसे बाहर कौन लड़कीन पढ़त है ना, वो लोगों के भी छात्रावास का विशेष सुविधा भी करावल गया रहला।
1: भाई देखा, हर तरह से जब सब केहू समाज में आगे बढ़ेला ना, तब अपने समाज का विकास होला, अपने

0: कहें से कि अपन आगे आवे वाली पीढ़ी के भी इकर सुविधा मिल सके। देखा बहुत बहनी लोगन ऐसा नहीं ना कि कहब कि भाई वो बर्तन धोवत हैं तो नल का टोटी खोल दिए पानी गिरा था बर्तन धोवत हैं, तो देखा ऐसा ना करे के चाहिए भाई, पानी के अपव्यय ना करे।
1: बिल्कुल ये देखा पानी के ज्यादा जियान कर भी ठीक ना हाला। अगर कोनो काम करत हैं तो बाल्टी या मग्गा का यूज करें।
0: एकदम एकदम भाई, बाल्टी मग्गा का प्रयोग करें, उमन पानी भर के धैले, ओकरे बाद कपड़ा धोए के हो चाहे बर्तन धोए के हो। और देखा जल संरक्षण जब आदमी करे ना तो अपन भविष्य बचावेला, अपने बच्चन का भविष्य
1: बिल्कुल
0: बचावेला।
1: बिल्कुल। आज देखा था ना अब तरह तरह के जो गाड़ी धोवाल जाता है वह देखा पाइप से धोवाल जाता होला। वह बता जैसे मग्गा का उपयोग करे, बाल्टी का उपयोग करे। अगर पेड़ पौधा में भी पानी देवल जाता होला तब वो मग्गा बाल्टी
0: टपक
1: का
0: सिंचाई का
1: भी।
0: प्रयोग करें।
1: बिल्कुल
0: देखा
1: बिल्कुल
0: ऐसा नहीं कि पानी का अपव्यय कोनो चीज बिना करे के चाहिए,
1: नहीं।
0: और देखा ओके बचावे का प्रयास करे कि चाहिए। और पानी जब बरसात का दिन आवे तो ओके कैसे सुरक्षित करे के हा, ये कुल भी
1: देखो
0: अपन समझ बूझ के भाई कई तरह का तरीका होके भी प्रयोग करके कैल जा सकता था, ताकि हमार जो हम सुख सुविधा लेती तो आगे वाला बाल बच्चन भी ले। और देखा बात बात कही तो मन कही ले जाए, पहले ही
1: ले
0: बहन लोगों के संदेश सुनवा दो जाए।
1: सुनवा दा।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 0542227658।
4: ओ
7: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
7: 0542227658।
8: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सनेस तो हो गया। देखा जब हम ना निके कर ना बत कही लेके आयल है काम काजी महिला और बिगड़ता पारिवारिक संतुलन। एक पर देखा बतियात सुन भी जाए सवाल से सिखा श्रीवास्तव बहनी तो बहनी लोगों सुने
0: सुनवा दो।
9: श्रोता बहनों, जब कोई महिला बाहर काम करती है और घर भी संभालना पड़ता है तो इस दोहरी जिम्मेदारी के बीच में उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में पारिवारिक संतुलन को बनाए रखना उसी की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है और सारे लोग उस पर ही निर्भर हो जाते हैं कि ये दोनों चीजों को व्यवस्थित कर लेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या वो संतुलन को बना पाती है, परिवार का संतुलन बिगड़ता क्यों है, इन सभी विषयों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे बीच में आई हैं सुरभि जायसवाल जी। ये एक संस्था में प्रबंधक हैं और आप लोगों को बताएंगी कि किस तरह से हम परिवार के बीच में संतुलन स्थापित कर सकते हैं और क्या क्या चुनौतियां हमारे बीच में आती हैं। तो सुरभि जायसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
10: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
9: आप क्या मानती हैं कि आज के समय में कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी पारिवारिक चुनौतियां क्या हैं?
10: देखिए कामकाजी महिलाएं तो हर क्षेत्र में हैं, मेडिकल में हैं और हॉस्पिटल में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं
9: जी।
10: अब चुनौती तो अलग अलग है हर महिला की
9: जी।
10: किसी के लिए सुबह और जल्दी उठना एक चुनौती है, अपने घर के बड़ों का ख्याल रखना, सबके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, किसी की दवाएं चल रही हैं तो उसका ध्यान रखना। अब इन सबके बीच में संतुलन बनाए रखना यही सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में।
9: ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, और इसी संतुलन को जब कोई महिला नहीं बना पा रही है तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे में मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है?
10: बिल्कुल मैम, मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ना बिल्कुल जायज है। जब ये असंतुलन बढ़ेगा किसी एक सदस्य पे प्रेशर यानी दबाव बढ़ेगा, अब वो दबाव मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी तरह उसको अफेक्ट

0: करता है, मतलब कि वो उसको प्रभावित करता है।
1: जी
0: अब ये दबाव आगे चलकर एक समय सीमा के बाद या तो पारिवारिक कलेश का रूप लेगा, या तो शारीरिक और मानसिक परेशानियों की उत्पत्ति का कारण बनेगा, जिसमें कि कई सारी बीमारियां भी हमें देखने को मिल सकती हैं, और
1: जी
0: हार्मोनल इम्बैलेंसेस औरतों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे कि कई सारे औरतों से रिलेटेड बीमारियां उनको देखने को मिलती है।
1: अच्छा, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी नींद का पूरा ख्याल रखना चाहिए, अपने पोषण का ख्याल रखना चाहिए, व्यायाम अवश्य करना चाहिए, अपने मानसिक संतुलन का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीजों का मतलब प्रैक्टिस में लाना चाहिए। दूसरा, अपने पारिवारिक सहयोग का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, आपके जितने आपके जो पति हैं, आपके मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, है ना, तो उनसे आप संवाद रखें, आपसी संवाद रख करके आप ये पूरा करने की ये पूरे एंश्योर करने की कोशिश करिए कि हर कोई एक एक जिम्मेदारी बांट ले, जिससे कि किसी एक सदस्य पर किसी तरह की जिम्मेदारी का बोझ ना पड़े।
1: तो क्या आपको ये देखने को मिलता है कि जहां बहुत सारे लोग रहते हैं या जैसे संयुक्त परिवार की स्थिति होती है तो वहां ये समर्थन मिलता है, जबकि एकल परिवार जहां रहते हैं वहां पर ये चीज नहीं देखने को मिलती है?
0: जी मैम, देखिए, एकल परिवार में तो लोग कम हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा है।
1: जी
0: जहां संयुक्त परिवार है तो जिम्मेदारियां तो बढ़ गई, वहां परेशानी कम है। पर एकल परिवार में दो लोगों के बीच में सारी जिम्मेदारियां साझा करना, उदाहरण के तौर पर अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं, तो एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी पापा हैं, दोनों कार्यरत हैं। अब मम्मी को सुबह उसको टिफिन भेजना है, कहीं कभी किसी वजह से माँ को लेट हो जाता है सुबह उठने में, अब वो टिफिन भी बनाना है, उसको तैयार भी करना है, उसको बस तक पहुंचाना है या स्कूल तक छोड़ना है, तो अब ऐसे में वो क्या करेगी? तो आपसी संवाद अच्छा रहेगा और आपसी सहयोग अगर अच्छा रहेगा तो भाई, पति है तो वो खाना नाश्ता बना दिए बच्चे का, स्कूल पहुंचा दिए बच्चे को, तो इस तरह से समन्वय स्थापित करके आपसी सहयोग के माध्यम से, यानी कि पूरा सपोर्ट सिस्टम जब रहे पति देव का भी, तो महिला बहुत अच्छे से अपना काम कर सकती
1: मतलब जितने लोग ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनको ये ध्यान देना होगा कि वो अपने अपने पतियों से कहें कि वो बराबर का सहयोग करें।
0: जी जी
1: और
0: अवश्य
1: ऐसा होता है, जो आपने कही बहुत सही बात कही, जब माता और पिता दोनों लोग बाहर काम करते हैं
0: जी
1: तो ऐसी स्थिति में बच्चों का जो पालन पोषण है वो प्रभावित होता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए?
0: जी अब देखिए, जब छोटा बच्चा है, मान लीजिए 5 साल 7 साल तक का बच्चा है, उसे ममत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।
1: जी
0: और जब बच्चा 10 साल से 20 साल तक का होता है, तो वहां पे हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो क्या पढ़ रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, टीवी में क्या देख रहा है, वहां पे पूरी मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है कि कहीं उसके कोई ऐसी संगति न मिल जाए उसे, कि जिससे उसका सामाजिक विकास खराब हो जाए। तो प्रभावित तो इसमें मानसिक, स्वाभाविक है, और भावनात्मक और मतलब इमोशनल और सोशल दोनों चीजें प्रभावित होती हैं इसमें। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? हाँ, ये कर सकते हैं कि आप किसी अपने, अगर ज्वाइंट फैमिली है आपकी, तो आप अपने सास ससुर को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल कर दे, कभी हस्बैंड देख लिया, हस्बैंड ने देख लिया, कभी वाइफ ने देख लिया कि हाँ चलो आज मैं बच्चों के साथ रह जाती हूँ, ठीक है। अब एक और क्वालिटी टाइम की यहाँ बात आती है कि भाई, क्वालिटी टाइम मेंटेन करना सबके लिए जरूरी है, चाहे
1: जी
0: वो बड़े हों, बुजुर्गों, बच्चे हों। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि आप एक साथ खाना खाइए, कोशिश करिए कि एक साथ चाय पीजिए, आपस में बातें करिए जब भी खाली समय हो, या एक साथ मिलकर काम करिए। जैसे अगर खाना बना रहे तो किसी ने सब्जी काट लिया, किसी ने छौंक दिया, किसी ने परोस दिया, किसी ने पानी सर्व कर दिया, इस तरह से आपसी सहमति के साथ अगर हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए अपने परिवार में चलेंगे, तो कामकाजी महिलाओं को सब कुछ करना बोझ नहीं लगेगा, और जो बच्चों का विकास है वो भी बेहतर रूप से होगा। बच्चों को भी इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी
1: तो जब हम पारिवारिक संतुलन को बिगड़ने की बात करते हैं कि पारिवारिक संतुलन बिगड़ रहा है तो इसमें जिम्मेदार कौन होता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से कारण इसके सामने आते हैं कि परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है और महिला परेशान हो जाती है?
0: देखिए, कई बार ना चुनौतियां ऐसी आती हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है।
1: जी
0: जैसे कभी समय को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर, मान लीजिए किसी भी सदस्य की तबीयत खराब हो गई उसमें, तो अब

0: उसमें क्या कर सकती है कामकाजी महिला है, उसको तो आराम चाहिए। तो फिर देखिए कारण कई सारे हैं, जैसे कि समय की सीमा होना। अब एक 24 घंटे सबके पास है, अब जिसके पास जिम्मेदारी ज्यादा है उसके पास समय सीमा होने की वजह से प्रेशर, और ये एक चैलेंज है कामकाजी महिला के लिए। दूसरा, अगर किसी के स्वास्थ्य खराब हो गई परिवार में किसी का भी, तो वो भी एक इम्बैलेंस होने का चांस है। अब साल के 365 दिन है, जिसमें से किसी एक दो दिन या हफ्ते महीने दिन ऐसे भी निकल सकते हैं कि जिसमें इम्बैलेंस हो। महिला इस तरह से अपने आप को ट्रेन करती है, वो अपना दिनचर्या इस तरह से चलाती है कि उसको, वो इस बात से पूरा सुनिश्चित करती है स्वयं को कि मेरा पूरा पारिवारिक सामाजिक बैलेंस बना रहे। वो तत्पर रहती है अपने कार्य के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, चाहे वो माँ हो, बहू हो, बेटी हो, जिस भी रूप में हो।
1: बुजुर्गों की जो देखभाल है वो इस संतुलन को बनाने में क्या महत्व रखती है?
0: देखिए बुजुर्गों की देखभाल तो एक ये जिम्मेदारी है ना, तो ये एक चुनौती ना कह के इसे जिम्मेदारी कहेंगे। अगर वो हमारे सास ससुर ना होते, हमारे माँ बाप हैं, तो भी वो मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं। और वहां पे हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी हेल्पर की, मतलब हाउस हेल्प जो होते हैं या नर्स होते हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। और अगर शहर है तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी आसान हो जाती है, गाँव होता है तो यहाँ पर पड़ोसियों की मदद ली जाती है, तो जिसमें सिर्फ पारिवारिक नहीं, सामाजिक तरीके से भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं।
1: एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ये जो आजकल का समय है मोबाइल और डिजिटल युग का,
0: जी जी
1: तो क्या मोबाइल कारण हो सकता है परिवार के संतुलन को बिगाड़ने में?
0: बिल्कुल मैम। जब देखिए एक उदाहरण के तौर पर, अगर हम भी कभी अपने घर में देखते होंगे कि परिवार का हर सदस्य कभी एक टाइम पे सभी मोबाइल देख रहे होते हैं, अब वही स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, अगर वही चीज ज्यादातर समय तक, ज्यादा लंबे समय तक चलती रहेगी, तो आपस में एक तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये पैदा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, और जिससे कि पारिवारिक कलेश भी देखने को मिल सकता है।
1: अच्छा, आप भी एक कामकाजी महिला
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: आप अपना कुछ अनुभव बताइए कि ये जो काम का बंटवारा है या जो बैलेंस करने की बात है, इसको आप और आपके परिवार के लोग किस तरह से करते हैं?
0: देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे परिवार में मेरे पति मुझे काफी सहयोग करते हैं। अगर मैं कभी सुबह देर से उठ गई तो वो मुझे ये सपोर्ट करते कि हाँ चलो ठीक है, बस छूट गई, कोई बात नहीं, तुम आराम से करो काम, मैं उसको स्कूल छोड़ दूंगा। तो अब मुझे आधे घंटे का मार्जिन मिल जाता है जहाँ की मैं चीजों को संभाल पाती हूँ। और कभी ये भी होता है कि हाँ वो मेरे लिए, मेरे साथ लग जाते हैं वो टिफिन बनाने में। और कभी ऐसी भी चीजें होती है कि सामाजिक चीजों में हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, कहीं मैं नहीं जा पाती तो वो चले जाते हैं, जैसे जहाँ हमें दोनों को जाना जरूरी है तो वहां पे हम लोग इस तरह से करते हैं, कभी वो चले गए, कभी मैं चली गई।
1: तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। अच्छा, हमारी श्रोता बहनों के लिए आपका क्या संदेश है कि वो किस तरह से रहें, किस तरह से मैनेज करें कि परिवार में संतुलन स्थापित कर सकें?
0: देखिए संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। आप दूसरों को खुश रखने के लिए ये बिल्कुल प्रेरित रहती हैं, हमेशा तत्पर रहती हैं दूसरों को खुश करने के लिए कि आपका हर परिवार के सदस्य, चाहे सास हो, ससुर हो, सभी खुश रहें। तो खुश रहने के लिए पहले अपना ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। और हाँ, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है परिवार को बनाए रखने के लिए। तो अपने प्रेम का ख्याल ऐसे रखना है कि भाई आपसी संवाद रखिए, कुछ दुख है, तकलीफ है तो अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, साझा करिए। और जो भी सॉल्यूशन उनको, आपको नहीं मिलता किसी चीज में, किसी छोटी मोटी, भाई परिवार में परिवार है तो छोटी मोटी कुछ ना कुछ चुनौतियां हमेशा लगी रहती हैं सबके साथ, तो आप अपने पार्टनर से शेयर करिए, उनसे सॉल्यूशंस मांगिए, और बहुत ही सहजता से अपने परिवार को संभालिए।
1: बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी, और सच में श्रोता बहनों से मेरा भी यही कहना है कि वो बहुत समझबूझ के साथ बाहर और घर में संतुलन स्थापित करें, और परिवार के लोगों को भी चाहिए कि वो पूरी तरह से सहयोग करें और रूढ़िवादिता की सोच से निकल करके बाहर आएं। ये कहना उचित नहीं है कि अगर घर की बहू है, बेटी है, तो उसी की जिम्मेदारी है कि घर के सारे घरेलू काम करें। ऐसा न सोच करके सभी सदस्य परिवार के, जैसा कि आपने कहा, अगर काम को बांट लें, अपने काम का सामान्य रूप से बंटवारा हो जाए तो किसी पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और पारिवारिक संतुलन

0: बना रहेगा। तो सुरभि जायसवाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और कामकाजी महिला और बिगड़ता पारिवारिक संतुलन इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चंपा बहिन,
2: हाँ
1: देखा हो कामकाजी महिला और बिगड़ता सा पारिवारिक संतुलन, यही विषय पर सुरभि जायसवाल से बतियावत रहनी है सीखा श्रीवास्तव बहिनी। तो देखा कितना नीक जानकारी बहिनी देनी है कि भाई जे कामकाजी महिला लोगन हैं वो कैसे अपने परिवार में, अपने काम में, अपने कार्यालय घर सब की कैसे संभालते हुए अपने परिवार में संतुलन बना सकेनी। तो ऐसे अगर भाई के अब नहीं हन तो अपने परिवार में अच्छा संतुलन बना के परिवार का माहौल भी अच्छा रहे। या देखा जब कहा जा रहा ना कि परिवार में हंसी खुशी सबकर मन रहे ला ना, तो भाई हर काम बढ़िया लगेला हो।
2: बिल्कुल,
1: और देखा सबकर स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेला। तो देखा अब बहन लोगन जोहत हुई है ना कि मीना या चंपा कोनो गीत गो नहीं ना सुनवैनी, तो का सुनाओ तू बहन लोगन के?
2: चला यही पर एक गीत सुनवाई दे।
1: हाँ तो देखा बहन लोगन अभी एक निक गीत सुने
2: सुनवा दा।

0: मीना बहन, गीत गौनई तो देखा हो गयल, आज पिटारी में ले आयल का हो वो?
1: देखा पिटारी में, हम बताई ना कि देखा इसमें बाजारे में ना लीची कितना देखा था हो।
0: हाँ।
1: लीची कितना अच्छा भी लगेला खाए में, तो हम कहीं कि देखा एकर गुड़ बता देवल जाए कि एकर गुड़ इमन बहुत गुड़कारी भी है लीची भाई। देखा इमन जो ना कि हाइड्रोजन मिलेला जिसे एकर तासीर ठंडा रहेला, अब पेट में ठंडा प्रदान करेला भाई। गर्मी के दिन में ऐसा तासीर ठंडी वाली चीज खा ना तो लुआर तपन से आदमी बचल रहेला, अब पेटे में ठंडा रहेला तो भाई आराम मिलेला अपने शरीर के, आ इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ावेला, अपन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना ओके भी बढ़ावेला लीची। आ देखा पाचन शक्ति भी मजबूत करेला, एमन फाइबर मिलेला जिससे कि कब्ज का समस्या दूर होला।
0: आ ए मन देखा ना वजन के भी नियंत्रण करने में मददगार होला। लीची में कैलोरी की मात्रा ना कम और पानी की मात्रा अधिक होला जो उनके वजन घटावे के प्रक्रिया में सहायता करला।
1: देखा एमन विटामिन सी भी पावल जाला। देखा लीची के खैले से ना भाई अपने त्वचा में भी निखार आवेला।
0: हाँ।
1: देखा हम कहें कि ब्लड प्रेशर जोन होला ना वो भी नियंत्रित करेला लीची, और वजन कम करेला। जेकर वजन ज्यादा हो गला तो कहीं लीची खाए के चाहिए। देखा खाली पेट लेकिन भाई लीची का सेवन ज्यादा ना करे के चाहिए।
0: अगर लीची खाए की होला तो दिन में कम से कम ही खाए, यह ना कि बहुत ज्यादा की मात्रा ले, अपने हिसाब से खाए और कुछ खाना वाना खाईले के बाद ही खाए।
1: और देखा हम कहें कि देखा अपन जो है ना कि पर्यावरण के भाई बचावे के जिम्मेदारी सबकर है,
0: सबकर होला।
1: और देखा ऐसे भाई सब कोई के चाहे कि चाहे कहल जाला ना कि अपने पर्यावरण के संरक्षित जरूर करे के चाहिए, और कोशिश करे कि भाई कोनो शुभ अवसर है तो अपन एक ठे पेड़ लगावे, और ओके पेड़ लगावे ही ना ओके अच्छा से सींचे, ओकर अच्छा से देखभाल करे,
0: देखभाल भी करे के चाहिए।
1: काहे से कि कहल जाला ना कि एक पेड़ सौ पूत समान।
0: बिल्कुल। एक ठे बात और बताई हम, देखा इतना गर्मी चल रहा है ना कि देखा जीव जंतु पशु पक्षी सबके पानी का जरूरत होला। अगर हो सके तो अपने घरे के बहरे या फिर छत पर पानी का व्यवस्था करल करे जैसे कि वो लोगों के भी पानी मिल सके।
1: एकदम सही बात कहत हो। और देखा हम कहे कि भाई पानी अब पेड़ जोन लगावे ओके भी पानी दे, काहे से इसमें इतना तेज घाम चलत है, जब राही पर मनई चलत हो ना तो सोचत हो कि भाई कहीं तनी पेड़ पालो मिले तो छहा लेवल जाए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो जब पेड़ आदमी लगाई तो जोन पेड़ हमन उनके भाई संरक्षित करे, ओके काटे की ना चाहिए।
0: बिल्कुल ना है
1: भाई के पेड़ के कटाई से बचे, अब पेड़ के लगावे के चाहिए।
0: हाँ देखा हो ये तो सही कहत बाऊ, बाकी जोन आपन नदी तालाब होला ओके भी साफ रखे के होला
1: कि भाई नहीं कि घर द्वार बटोर के अगर अगल बगल तालाब हो तो मन कचरा फेंक दे, ऐसा एकदम ना करे के
0: नहीं। अगर जोन जलावे युक्त होला कूड़ा ओके जला दी, अगर गीला कचरा होला तो हो को देखा आवलन
1: नहीं भाई कूड़ा कचरा के जलाओ नहीं, ओकरे स्थान पर ओके फेंके के चाहिए, जहाँ पे कूड़ा फेंके का स्थान हो वहाँ कूड़ा कचरा फेंके, गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग। भाई देखा अपन पर्यावरण जब सुरक्षित रही संरक्षित रही तब अच्छा रही।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम सही कहत बाऊ। आ देखा हो हमने जैसे समय से आई ला ना वैसे मने समय से जाओ के हो जाला, तो चला कहल जाए नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है सतीश चंद्र यादव और साथियों के गाए लोकगीत। पहले सुनिए एक लाचारी।

0: through bringing all weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heatwave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Nambula, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास बुनियादी ढांचे के विस्तार सामाजिक कल्याण रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन

0: उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ब्लेमिंग नेबर्स फॉर इट्स ओन फेलियर्स इज एन ओल्ड पाकिस्तानी हैबिट।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर

0: पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम

0: चरणपुरा, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाने तराने।

सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, आशा भोसले जी इस दुनिया से चली गईं। 92 साल की उम्र में आशा जी का देहांत हो गया और इसी के साथ भारतीय सिने संगीत के सुनहरे दौर की आखिरी निशानी भी हम भारतीयों से ईश्वर ने वापस ले ली। अब बस आशा जी की यादें रहेंगी और उनके हजारों गीत होंगे जिन्हें बरसों से लोग सुनते आ रहे हैं और बरसों तक सुनते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं के गाए कुछ गीतों पर चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत हम करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसने बॉलीवुड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1966 में रहस्य और रोमांच से भरपूर फिल्में बनाने वाले राज खोसला के निर्देशन में बनी मिस्ट्री फिल्म मेरा साया का, और उस फिल्म के गीत झुमका गिरा रे, जो लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हुआ और आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं। अब जब बरेली का जिक्र होता है तो ये प्रश्न उठता है कि भाई वो झुमका मिला या नहीं मिला, लेकिन बरेली ने 54 साल बाद वह झुमका आखिरकार खोज ही निकाला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बरेली के बाजार में खोए अभिनेत्री साधना के झुमके के नाम पर बरेली में स्थित NH-24 का 0 पॉइंट झुमका तिराहा बनाया गया है। यहाँ एक पोल पर झुमके की आकृति को बनवाया गया है जो लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है। इस तिराहे से गुजरने वाले लोग खास झुमके को देख उसकी तस्वीर लेने से खुद को रोक नहीं पाते, और यहाँ कोई झुमके के साथ सेल्फी लेता है तो कोई इसकी अलग अलग तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करता है। 200 किलोग्राम वजन के इस झुमके को बनाने में 18 लाख रुपए का खर्च आया है और गुड़गांव के एक कलाकार ने इसे तैयार किया है। इसे बनाने में पीतल और तांबे का इस्तेमाल किया गया है और इसके आसपास 3 सूरमे दानी को भी सजाया गया है। इसे लखनऊ दिल्ली हाईवे पर बरेली शहर के प्रवेश मार्ग पर 14 फीट ऊंचाई पर लगाया गया है। झुमका करीब 200 मीटर दूर से लोगों को नजर आता है। तो आइए आशा भोसले की यादों को नमन करते हुए सुनते हैं मेरा साया फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, एक बार जब किसी ने मशहूर गीतकार गुलजार साहब से लता और आशा जी के बारे में पूछा कि दोनों में बेस्ट कौन है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए लता जी और आशा जी नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिंग की तरह हैं। चांद पर कदम तो दोनों ने रखा है। यूं समझ लीजिए कि अगर लता जी विंडो सीट पर थीं तो आशा उनके ठीक बगल में थीं। गुलजार ने यह शानदार बात अपने अंदाज में कही थी। आज जब लता जी और आशा जी दोनों ही लोग नहीं हैं, तो गुलजार और आशा भोसले की जुगलबंदी को याद करते हुए गुलजार का लिखा और आशा भोसले का गाया वो पहला बड़ा हिट गाना जो वर्ष 1972 में फिल्म परिचय का है, और गाने के बोल हैं सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। हालांकि इससे पहले वर्ष 1968 में आशीर्वाद में साफ करो इंसाफ करो जैसा गाना भी आया था। आशीर्वाद के इस गाने को गुलजार ने लिखा था, पंचम दा ने इसकी धुन बनाई थी और आशा भोसले जी का काम कमाल था, लेकिन वो गाना उतना मशहूर नहीं हुआ जितना परिचय का ये गाना हुआ।

बिच्छू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

दोस्तों, हर माँ ने अपने नौनिहाल के लिए चंदा को मामा बनाया। भारत अब चांद पर पहुंच गया, इसलिए चंदा मामा अब दूर नहीं रहे। माँ की लोरियों में चंदा मामा दूर के सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। आज से 7 दशक पूर्व वर्ष 1955 में फिल्म वचन में यह गीत रिलीज हुआ था और कभी पॉपुलर काउंटडाउन शो बिना का गीतमाला के साल के सबसे ज्यादा पसंद किए गानों की लिस्ट में 6 नंबर पर था। आशा भोसले ने इस गीत को अपनी आवाज दी है, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने इसे कंपोज किया और रवि ने ही इस गाने के बोल भी लिखे हैं। ये एक ऐसा गाना है जो बरसों से हर माँ अपने जिगर के टुकड़े को गा गा कर सुना रही है। इस गीत को सुनकर कभी बच्चे प्यार से निवाला खाते हैं तो कभी अपनी माँ की आंचल तले सो जाते हैं। इस फिल्म ने रवि को सफल संगीतकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया था।

श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आशा जी को उमराव जान फिल्म के गाने मिले। दरअसल साल 1981 में आई फिल्म उमराव जान के गाने दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती के, जुस्तजू जिसकी थी, इन सभी गीतों में रेखा के मोहक व्यक्तित्व पर खय्याम के संगीतबद्ध गानों ने आशा भोसले की आवाज को एक अनोखी नजाकत और गहराई दी। हालांकि शुरुआत में आशा इन गानों को नहीं गाने वाली थी। शुरुआत में उमराव जान का संगीत खय्याम नहीं बल्कि संगीतकार जयदेव तैयार कर रहे थे और फिल्म के निर्देशक मुजफ्फर अली ने रेखा की आवाज के रूप में लता को चुना था। दरअसल जयदेव उमराव जान के रूप में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संगीत तैयार कर रहे थे। उन्होंने 8 गीत बनाए थे। जयदेव ने बताया था कि इनमें से 5 गीत तो खास तौर पर रेखा पर लता की आवाज में ही सोचे गए थे। वे लता और शायर शहरयार के जुड़ने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि हर फिल्म पर कलाकार का नाम लिखा होता है, वह किसकी झोली में जाएगा यह भी किस्मत की बात मानी जाती है, और वैसा ही जयदेव के साथ भी हुआ। मुजफ्फर अली के साथ पैसों के विवाद के कारण बात नहीं बनी। जयदेव की जगह खय्याम आए और फिर आशा भोसले की एंट्री हुई। उनके गानों का सुरूर इस कदर छाया कि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उस वर्ष उन्हें ही मिला। सीमित बजट में बनी यह फिल्म बाद में क्लासिक फिल्मों में शुमार हुई।

और अब दोस्तों बातें उस मशहूर गीत की जिसने आशा भोसले को उनकी पहचान दी। जी हाँ, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। ये गाना आशा जी ने मोहम्मद रफी के साथ फिल्म तीसरी मंजिल के लिए गाया था, जो बेहद लोकप्रिय हुआ था, जिसमें आजा आजा में सांसों का अद्भुत कमाल दिखाया गया था। इस गाने से जुड़ा रोचक हिस्सा आशा जी ने एक कार्यक्रम में सुनाते हुए बताया था कि एक दिन संगीतकार आरडी बर्मन अपना हारमोनियम लेकर आशा जी के घर पहुंच गए और बोले, आप मेरे लिए एक गाना गाएंगी? आशा ताई ने कहा, जरूर, यही तो मेरा काम है और अपने काम से मुझे बहुत प्यार है। फिर आरडी बर्मन नीचे फर्श पर ही बैठ गए और हारमोनियम पर उन्होंने आजा आजा गीत गाना शुरू कर दिया। आशा ताई ने जब आरडी बर्मन यानी पंचम दा के मुंह से गीत सुना तो हैरान रह गई। वे समझ गई कि ये गाना बहुत कठिन होने वाला है। पहले तो उन्होंने सोचा कि पंचम दा को मना कर दे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे 4 से 5 दिन का वक्त दे दो, उसके बाद मैं ये गाना रिकॉर्ड कर पाऊंगी। पंचम दा के जाने के बाद आशा जी को जब भी मौका मिलता वे इस गाने की प्रैक्टिस करने लगती। 2 दिन बाद आशा जी अपनी किसी दोस्त से मिलने गईं। वहां से लौटते वक्त कार में भी वे इसी गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। आशा जी आजा आजा वाले हिस्से की प्रैक्टिस कर रही थी, इसे सुनकर उनका ड्राइवर घबरा गया। उसने सोचा कि शायद आशा जी को सांस में कोई परेशानी हो रही है। चूंकि आशा जी के घर के पास ही एक अस्पताल भी है, तो घर के नजदीक पहुंचते ही ड्राइवर उनसे बोला, बाई गाड़ी हॉस्पिटल में ले लूं क्या? ये सुनकर पहले तो आशा जी को बड़ी हैरानी हुई, फिर जब उन्हें पूरा माजरा समझ में आया तो वे जोर से हंसनी और ड्राइवर से बोली, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो एक गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो आइए इस गाने को सुनते हुए कार्यक्रम में चलते हैं आगे।

दोस्तों, जीवन छीज जाता है मगर स्मृतियां बची रहती हैं। इत्र की शीशी से इत्र बह जाए, फिर भी खाली शीशी में बसी गमक बाकी रहती है। आशा जी ऐसी ही शय हैं जो जीवन से कभी नहीं जाती, आज भी कहां गई हैं, समाई हुई हैं अपने गीतों के भीतर इत्र की तरह का सुगंध लिए हुए। उनकी स्मृतियों को सादर नमन करते हुए इस कार्यक्रम से अब दीजिए अपने रेडियो मित्र आशुतोष को अनुमति। नमस्कार।

0: कार्यक्रम आप सुन रहे थे सुहाने तराने, प्रस्तुति आशुतोष की थी।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा।
3: एक जमाने से

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब सम्पन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है आज की संध्याकालीन सभा।

सभा के आरंभ में धरती के गीत कार्यक्रम में सुनिए सुरेश गुप्ता और कुमारी रत्ना भौमिक के गाए ब्रज गीत।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुरेश गुप्ता और कुमारी रत्ना भौमिक के गाए ब्रज गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: खूबसूरत हो तो ज़िंदगी होती है, मंज़र नया हो तो ज़िंदगी होती है। कदम ठहर जाएं हार कर कहीं, कदम फिर बढ़ाएं तो ज़िंदगी होती है।
1: जी हाँ दोस्तों, शाम के बाद रात और रात के बाद सवेरा और फिर एक नई शाम, जिसमें हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नया और कुछ खास।
0: और आज की शाम में क्या है खास ये बता

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 054-222-7658।
2: ओ
1: 054-222-7658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 054-222-7658।
5: दोस्तों, हम सबके मन में कभी ना कभी कोई सपना जरूर होता है, कुछ नया करने का, अपनी पहचान बनाने का, या फिर किसी गलत चीज को समाज में बदलने का। लेकिन अक्सर एक सवाल भी मन में आता है, क्या मेरे अकेले के प्रयास से सच में कोई फर्क पड़ेगा?
6: और अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आता है तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज है एक ऐसा दिन जो हमें एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की याद दिलाता है जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। आज है बिरसा मुंडा शहादत दिवस।
5: भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम जो आज भी जंगलों की हवाओं में, आदिवासी समाज के गीतों में और भारत के इतिहास में जिंदा है।
6: दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के एक छोटे से आदिवासी परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही अपने लोगों की तकलीफें देखी थी। उन्होंने देखा था कि कैसे अंग्रेजी शासन, जमींदार और ठेकेदार आदिवासियों की जमीनें छीन लेते थे और उन पर जुल्म करते थे।
5: लेकिन दोस्तों, बिरसा ने हार मानना कभी नहीं सीखा। उन्होंने आदिवासी समाज को जगाना शुरू किया, लोगों से कहा कि अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी पहचान को बचाओ और अन्याय के सामने कभी मत झुको।
6: धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए और फिर आया वो समय जब उनकी आवाज एक आंदोलन बन गई।
5: बिरसा मुंडा का संघर्ष जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए था। उनका मानना था कि आदिवासी समाज को अपनी भूमि और संसाधनों पर अधिकार मिलना चाहिए। इसी सोच को उन्होंने अबुआ राज, अबुआ दिसुम यानी हमारा राज, हमारी धरती के नारे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया।
6: और दोस्तों, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और लोगों में आत्मसम्मान का भाव जगाया। यही कारण है कि लोग उन्हें प्यार और सम्मान से धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से याद करते हैं।
5: दोस्तों, अब आप सुनेंगे भगवान बिरसा मुंडा वाचन, स्वर व आलेख अरुण पांडे की और प्रस्तुति आशुतोष कुमार की।

0: चेतना पैदा हुई। रांची के निकट खूंटी जिले के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को सुगना मुंडा की धर्मपत्नी कर्मी हातू की कोख से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बिरसा। बिरसा एक बेहद चंचल और होनहार बालक थे। ताकत में किसी से कम नहीं थे। उनके बचपन का अधिकांश समय अखाड़ों में बीतता था। तीक्ष्ण बुद्धि के होने के कारण किसी बात को बहुत तेजी से बिरसा ग्रहण कर लेते थे। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में हुई। इसके बाद वो चाईबासा में इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ाई करने लगे। मिडिल में शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही बिरसा मुंडा बहुत कुछ सोचने और समझने लगे थे। बिरसा ने अपने अनुयायियों का समूह तैयार किया और उनसे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। याद दिलाया कि आदिवासी तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, बाग बगीचे लगाते थे, खेती करते थे और ईमानदारी से जीते थे। इसे वापस लाना हमारा अधिकार है। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और खेतों में काम करें। वो आदिवासियों को धर्म संस्कृति से जुड़ने और मिशनरियों के कुचक्र से बचने की भी सलाह देते थे। बिरसा अपने प्रयास से सीधे सादे आदिवासियों को जोड़ने में सफल रहे। बिरसा ने रामायण और महाभारत आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने वैष्णववाद, ईसाई और मुंडारी धर्म से तत्वों को लेकर एक अलग धर्म बनाया और उसे अपनाने पर बल दिया। इस धर्म का नाम बिरसाइत रखा गया। बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन को जीवन शैली बताया और पर्यावरण संरक्षण को धर्म का प्रमुख अंग माना। आज भी आदिवासी समुदाय उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उसे निभाता चला आ रहा है। अंग्रेज सरकार ने 22 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। पुलिस दल ने 24 अगस्त की शाम लगभग 3 बजे बिरसा मुंडा के घर को चुपचाप घेर लिया। बिरसा जहां कमरे में सो रहे थे वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई। अंग्रेज सरकार को लगा कि अब बिरसा मुंडा का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। आंदोलन के दूसरे चरण में बिरसा मुंडा ने फिर आदिवासियों को एकजुट किया। लोग जुड़े और आंदोलन तीव्रतर हो चला। इसी के बाद 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिए गए। इस बहादुर नौजवान को रांची कारागार में डाल दिया गया। बिरसा को भोजन में धीमा जहर दिया जाने लगा। अंततः इस वीर सपूत ने बंदी के दौरान ही जेल में 9 जून सन 1900 को अंतिम सांस ली। सामाजिक उत्थान और नवजागरण में भगवान बिरसा मुंडा और उनके विचारों का अतुल्य योगदान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक आयोजन में भगवान बिरसा मुंडा के इस योगदान को याद करते हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा,
1: अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने, समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा मम भाव बने। हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले, इस संकल्प को लेकर के चलना।
0: बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनकी प्रतिमा भी है। आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान मानता है, झारखंड।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर सामाजिक धार्मिक संरक्षण का सवाल, आदिवासी समाज अग्रणी भूमिका में रहा है। जुझारू प्रवृत्ति के आदिवासी आगे आकर संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। 1850 ईस्वी के बाद पुनर्जागरण की बयार आदिवासी समाज में पहुंचने के उपरांत उनमें भी एक नई चेतना

झारखंड के अधिकांश जिलों में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं हैं, जहां लोग श्रद्धा से शीश नवाते हैं। बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, आदिवासियों में जोश भरा, जिससे वो हमेशा देश के लिए अपना खून बहाने को तैयार रहे। भगवान बिरसा मुंडा की गाथाएं झारखंड के हर घर में सुनाई देती हैं। भगवान बिरसा मुंडा पर आदिवासियों सहित पूरे भारतीय समाज को गर्व है।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने सुना भगवान बिरसा मुंडा वाचन स्वर व आलेख अरुण पांडे की और प्रस्तुति आशुतोष कुमार की।
1: सच है दोस्तों, आज 9 जून को जब हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं तो ये वाकई उस साहस को याद करना है जो उम्र नहीं देखता है और किसी पद का मोहताज नहीं होता है। तो भगवान बिरसा मुंडा को उनकी शहादत दिवस पर हमारा शत शत
0: नमन।
1: नमन।

0: आया कि फोन मैं घर पर ही भूल आई।
1: अच्छा, जब ऐसा होता है तो उस वक्त ऐसा लगता है ना जैसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ छूट गई है। फिर मतलब पूरे दिन हमारे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि कोई कॉल या मैसेज इम्पोर्टेंट जो आया होगा वो हमसे छूट गया होगा।
0: बिल्कुल। और मज़े की बात तो ये है कि कई बार हमें फोन की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें बेचैनी होती है।
1: लेकिन मजाक से हटकर हम जो इतना फ़ोन से ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं ना, ये हेल्दी नहीं है और बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ लोगों में ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि वो आजकल नोमोफोबिया का नाम ले रहा है।
0: नोमोफोबिया यानी नो मोबाइल फोन फोबिया, मतलब मोबाइल फोन से दूर रह जाने का डर।
1: एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा फ़ोन पे डिपेंड हो चुका है ना कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब मोबाइल हमारी ज़रूरत से बढ़कर हमारा ऑब्सेशन बन गया।
0: बिल्कुल। और बार बार फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना, फोन को कभी स्विच ऑफ ना करना, नेटवर्क ना मिलने पर परेशान हो जाना, या हर समय ये चिंता करना कि कहीं फोन छूट तो नहीं गया, बस ये ही नोमोफोबिया के लक्षण हैं।
1: कई लोगों को फ़ोन के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं लोग, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए लेकिन उसका गुलाम हमें नहीं बनना चाहिए। कभी अपनी पसंदीदा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम, कभी अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं, और कभी हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी तो समय बिता सकते हैं। क्यों भूमि, आखिर उनका भी तो हक है ना हमारे वक्त पर।
0: बिल्कुल। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आज की यूथ डायरी में हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं। तो आज का हिंदी शब्द है अनुक्रमणिका, जिसका अर्थ होता है पुस्तक, दस्तावेज में मौजूद महत्वपूर्ण शब्दों, विषयों, नामों और अवधारणाओं की एक व्यवस्थित सूची, जिसे हम अंग्रेजी में इंडेक्स भी कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है, इतिहास की इस पुस्तक में हर अध्याय की शुरुआत में एक संक्षिप्त अनुक्रमणिका दी गई है।
1: और आज का इंग्लिश वर्ड है इम्पेसिबल, जिसका अर्थ होता है बिना किसी गलती या त्रुटि के, एंड इट्स स्पेलिंग इज IMPECCABLE। इम्पेसिबल मीन्स टू बी फ्लॉलेस, फॉल्टलेस एंड कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एरर। फॉर एग्जाम्पल, हर रिटन इंग्लिश इज इम्पेसिबल।
0: और अब इसी के साथ हम इतिहास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए सीख भी है।
1: बिल्कुल, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था।
0: दोस्तों, 9 जून को भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है।
1: 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पदभार संभाला था।
0: और दोस्तों, 2001 में आज ही के दिन भारतीय टेनिस जोड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति ने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता और भारत का गौरव बढ़ाया था।
1: 2011 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार MF हुसैन का लंदन में निधन हो गया था। उन्हें आधुनिक भारतीय कला के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में गिना जाता है।
0: और 9 जून 1949 को किरण बेदी का जन्म भी हुआ था।
1: तो दोस्तों अब
0: दोस्तों, अब
1: जान लेते
0: सरकार
1: हैं।
0: की उपलब्धि जान लेते हैं, जिसमें अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल की जिसने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, डिजिटल मीडिया अभियान। दोस्तों, कभी सरकारी सेवाओं के लिए लंबी कतारें लगती थी, हमें घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज कई सेवाएं मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हैं।
1: जी हाँ, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन दस्तावेज़, ई गवर्नेंस सेवाएं और तेज़ डिजिटल कनेक्टिविटी ने करोड़ों लोगों के जीवन को आसान बनाया है।
0: और आज गांवों से लेकर शहरों तक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं लोग। इससे समय की बचत हुई है और सेवाओं की पहुंच भी बढ़ी है।
1: यही कारण है कि डिजिटल इंडिया को देश के डिजिटल परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।
0: तो दोस्तों, तकनीक का सही उपयोग न केवल सुविधाएं बढ़ाता है, बल्कि विकास की नई संभावनाएं भी खोलता है।
1: हाँ दोस्तों, पैसा तो अब चलिए सुन लेते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी अभी आपने सुना एक प्यार भरा गीत, और हम उम्मीद करते हैं कि शाम को आपको ये गीत पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं अगला गाना।

0: दोस्तों, अब रुक करते हैं और जान लेते हैं आज की रोजगार सूचना। तो हमारी पहली रोजगार सूचना ये है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी SSC CGL 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्ती 12,256 रिक्तियों के लिए है और SSC आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2026 तक 32 वर्ष होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: और दोस्तों, इसी के साथ आप रेलवे भर्ती बोर्ड RBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सहायक लोको पायलट AALP पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। भर्ती 11,127 रिक्तियों के लिए की जा रही है और RBI आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 जून 2000

0: 26 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 1 जुलाई अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। और अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailways.government.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, अब इसी के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी जान लेते हैं,
0: लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे कल के विनर्स का नाम। तो दोस्तों, कल के जो हमारे विनर्स हैं, चंदा चंदौली से, मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा से, और प्रेमलाल वर्मा वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र मेघा, नंदिनी हर्षिता और ममता बाई वर्मा रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा नीरज, शिवम धीरज, चिंता वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा नेपा नगर मध्य प्रदेश से, और प्रभु दयाल शिवदे शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे संगीत की नगरी खंडवा से, श्यामा बाई रायकवार से।
1: और इसके साथ ही अंकेश कुमार सिंह ग्राम नकहरा चुनार मिर्ज़ापुर से, और डॉक्टर वी के आर वी राव। तो इसी के साथ दोस्तों, अब सुन लेते हैं ये गीत।

दोस्तों, तो आप वेट कर रहे होंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आधिकारिक आगमन किस राज्य से माना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आधिकारिक आगमन किस राज्य से माना जाता है। आप हमारा आंसर हमें हमारे इंस्टा आईडी यूथ AIR वाराणसी पर या हमारी मेल आई

0: youthairvns@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
1: और दोस्तों अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अपराजिता, क्या तुमने कभी ऐसे एक सुपर पावर के बारे में सुना है जो ना किसी दुकान में मिलती है और ना ही किसी ऐप से डाउनलोड की जा सकती है?
0: अरे वाह, ऐसी कौन सी सुपर पावर है?
1: वो सुपर पावर है पौष्टिक आहार की ताकत।
0: दोस्तों एक सवाल, अगर आपके शरीर को एक कार मान लिया जाए तो क्या आप उसमें गंदा या गलत ईंधन डालेंगे कभी?
1: तो दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, फिर अपने शरीर को क्यों जंक फूड का ईंधन दे रहे हैं?
0: बिल्कुल सही कहा, हमारा शरीर भी अच्छे ईंधन की मांग करता है, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, दालें, दूध, अंडे, मेवे और भरपूर पानी। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पौष्टिक भोजन सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता है बल्कि दिमाग को भी तेज़ बनाता है। पढ़ाई हो, नौकरी हो या खेल का मैदान, हेल्दी खाना हर जगह जीत दिलाता है।
1: हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम आपको एक छोटा सा चैलेंज देते हैं। अगले 7 दिनों तक हर दिन अपनी प्लेट में कम से कम 3 रंगों के फल या सब्जियां शामिल करें।
0: हरा, लाल, पीला, नारंगी, जितने ज़्यादा रंग उतनी ज़्यादा सेहत।
1: बिल्कुल दोस्तों, और पौष्टिक आहार अपनाएं, स्वस्थ और खुशहाल भारत बनाएं।
0: दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए।
1: हाँ तो और दोस्तों
0: नमस्कार।
1: हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने जो जो चीज़ें आज के कार्यक्रम में जानी आप उसे अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूर उतारेंगे। और इसी के साथ आपको मैं भूमि
0: और मैं आपकी रेडियो दोस्त अपराजिता
1: करते हैं नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि उनकरे सरकार का बीतल 12 बरिस विश्वास विकास आ जन कल्याण के समर्पित रहल हो। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कहने कि 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आ राष्ट्र प्रथम के भावना से वहां के नौजवानन महिला आ अपने किसान भाई बहन के मजबूत बनौले में कोनो कोर कसर नहीं छोड़ले हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा सुशासन और समृद्धि के इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी

0: वाई में पछला 12 बरिस में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति भइल हो। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सरकार के कोशिश के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
1: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ कैले। इस मौका पर वहां के कहने की अभिनव पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के ओ संकल्प के आगे बढ़ावेला जौन विकसित भारत आ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मजबूत आधार हो। इस मौका पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत मॉडलों का प्रशंसा कैले।
2: हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का मॉडल है, पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। हमारा ग्राम सचिवालय एक कमरे का नहीं है, 4 से लेकर 6 कमरे हैं वहाँ पे, उनकी अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल लखनऊ में अग्निशमन आपात सेवा विभाग का समीक्षा कैने। इस दौरान वहाँ के प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के और यो बेसी मजबूत बनौले पर जोर देने।
3: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। समाचार कक्ष से अरुण।
0: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहल पूर्व सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय को 102वीं जन्म जयंती बियाने बलिया में मनावल जाये। इस मौका पर बलिया के करनई के गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा आ गोष्ठी को आयोजन कैल जाये। मौसम विभाग बिहने से 11 जून ले कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। इस दौरान कहीं कहीं तेज लू चलने, बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेरियो चलने का चेतावनी दिहल गई बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के तहत सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा डॉक्टर आरपी शास्त्री का वायलिन वादन। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला की नवी कड़ी आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर, और सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 सुनिएगा उषा टंडन और राहत अली के गाये गजल। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। असिंचित दशा में खेती की उन्नत तकनीक, इस विषय पर डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह से रामकृष्ण मिश्र की बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे, और अन्य बातों के अलावा सुनिएगा सतीश चंद्र यादव और साथी का गाया लोकगीत भी।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल यानी 10 जून 2026 दिन बुधवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर और सुबह 7:31 पर सुनेगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, और शास्त्रीय संगीत के अन्य कार्यक्रमों में दिन 12:45 पर पंडित शारदा सहाय का एकल तबला वादन आप सुनेंगे। दंगोली कंकड़ का लिखा नाटक कर्फ्यू की रात आप सुनेंगे रात्रि 10:00। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर, और सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला की 10वीं कड़ी आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर।

सुगम संगीत में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे और दिन 12:30 पर कलाकार होंगे डॉक्टर रेवती साकलकर। किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। अन्य बातों के अलावा गन्ने की फसल में सामयिक कृषि, इस विषय पर वीरेंद्र कुमार सिंह की दी गई जानकारी सुनेगा और साथ ही साथ आप सुनेंगे अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गायन लोकगीत भी। श्रोताओं, इन्हीं के गायन लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर भी। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:15 पर। आज की बात यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना के अलावा आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी।

कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर और बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन में 1:15 पर। अन्य बातों के अलावा आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का प्रसारण समय होगा दिन में 11 बजे और सुबह 7 बजे सुनना न भूलिएगा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मधुमेह कारण लक्षण और उपाय इस विषय पर सुबह 6:35 पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना का प्रसारण समय होगा सुबह 6:10 पर और सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मिर्चा की खेती इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुने लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाजों में

0: उदित नारायण और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे हम तुम पे मरते हैं इस फिल्म का गीत। और अब आइए सुने इश्क फिल्म का गीत, आवाजें हैं उदित नारायण और विभा मिश्रा की।
1: ए, कह दो ना
2: क्या
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
2: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
2: I love you.

0: इश्क फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष द्वारा कुवैत आमीर इत्यनेन सह पश्चिमेशियायाः विकसितां सुरक्षा स्थितिं चर्चितवान्। भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानं निन्दयन् तं द्वेष उद्योगीति अवोचत्। खाद्य सुरक्षया सह कृषकाणां सशक्तीकरण विषये केन्द्रितस्य पञ्चदिवसीयस्य ब्रिक्स कृषि मन्त्रिणां सम्मेलनम् इन्दौर नगरे आरभ्यते। सामरिक मार्ग परियोजनायाः जोजिला गह्वर मार्गः अन्तिमां सफलतां प्राप्नोत्, येन कश्मीर उपत्यकया सह लद्दाखस्य च मध्ये सर्व ऋतु सम्पर्कः वास्तविकतया समीपे आगतः। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु 30 अधिकाः जनाः मृताः, प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। अपि च कर्णाटकस्य केरलस्य माही क्षेत्रस्य च उपरि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनामभिलक्ष्य भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना निर्दिष्टा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह इत्यनेन

सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमेशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिमालक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित तनावपूर्ण विषये गम्भीरा चिन्ता प्रकटिता तथा च क्वैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहित आक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च

0: राम राम।
1: जीतन भैया।
0: हाँ नंदू भैया, का हाल चाल बा, खेती किसानी को हो?
1: ए भैया, खेती किसानी का भी हाल चाल सही है और अपनो हाल चाल ए घड़ी सही है। काहे कि ऐसन टकटक घाम पड़त है ना कि ज़्यादा बहरे तो निकले के ना, आराम है आराम हो भैया।
0: आराम आराम के बात कहला भैया ना, देखा एक समय पहले का भी रहल तो आदमी आराम न करे हो, खेती में हमेशा जूझल है।
1: ए भाई देखा ए घड़ी हो का कि खेतों खालिए भल हो, अब बस तैयारी करे के तनी जो दो चार दिन का जोन तनी मनी आराम बा वो तो कह लेवे दा।
0: नहीं, आरामो जरूरी है भैया, इसे आदमी का शरीर सही रहला तो।
1: अब लगे के ही है, जब आई बरखा वाला टाइम तो अपन खरीफ में लगे के हो जीतन भैया। आ सबसे बड़ी चीज़ है कि सुबह शाम में अपन जौन खेत का तैयारी कर ले, यह जौन 8-10 दिन के बाद मा तनी बच बचा के रह ले। आ अपने खेती किसानी में देखल जाए एक चीज़ तो बड़ा परिवर्तन आ गल हो।
0: का परिवर्तन आ गल नंदू भैया?
1: पहले से लेके आज के समय में देखल जाए तो अब बड़ी बड़ी जौन हो व्यवस्था कुल बाणी, टेक्नोलॉजी जैके कहल जात हो वो कुल आ गल हैं। एकर इस्तेमाल करके अपने खेती के देखल जाए ना तो एक हमन फायदे का सौदा बना सकत है जा।
0: कहे नहीं भैया, फायदे का सौदा बना सकत है अगर वो तरीके से अगर हमने खेती करत है तो फायदेमंद तो हो ही सकला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो लोग कहें कि अरे खेती किसानी में का रखा ला, चला शहर चला, वहाँ जाके भले दूसरे का चाकरी करे के रहे, दरबानी करे के रहे, लोगन शौक से करे। आ वह तनी सी पसीना खेते में लोग न बहावे।
0: पसीना पसीना कथुआ ना, ये पसीना की वजह से लोगों के जो ना आजकल रोग फैलल हो जो कहला।

0: शुगर के बीमारी या कोनो बीमारी हो तो काहे होत हो। लोग मेहनत करना ना चाहत हुवन, खेते में पसीना बहाए ना चाहत हुवन।
1: ये भैया हो एक चीज जान ला कि मेहनत का कौनो ना हुआ, मेहनत जे करी वो जहाँ रही वो इंजा जो अपन तरक्की करी। आपन खेती किसानी तो जितन भी ऐसा हो कि मेहनत मांगत हो
0: कहने
1: सुबह
0: भैया
1: से शाम तक। काहे कि हो का कि पहले में अब में बड़ा परिवर्तन भल बा। एक चीज हो कि तनको ध्यान ना करबा तो खेती अपन जो भैया चौपट हो सकत हो।
0: नंदू भैया देखा खेती के बात कही ना तो हमारे एक बात ध्यान द देखा। एक पहले के जमाना जब रहल कि लोग खेती बाड़ी करें तो उमन जो आनी बहुखा दऊ वो हो तो लोग समझा कि भाई देखा ई दऊ का वो रहल कि भाई हमार फसल बर्बाद हो गल, लेकिन ओकर कोनो मोल चाल कोनो ऊ चीज ना मिले, बड़ा
1: ये
0: पछताए
1: भैया
0: किसान
1: हो
0: हो।
1: एक चीज जानला, जो चतुर किसान रहे वो समझला कि वो भापे चीज के। मौसम विज्ञानी भी एक तरह से कहल जाए तो रहे वो समझ जाए कि ए घड़ी जो ना ये स्थिति आ सकत है। अगर ऐसा ऐसा परिवर्तन आसपास देखात हो वायुमंडल में अपने आसपास में तो वो समझ जाए कि ये चीज़ हो सकत है। तो वो हिसाब से अपने खेती किसानी में जोन भी परिवर्तन करे के रहे भैया वो कह लें और जोन भी देख रेख करे के रहो ओके करें। लेकिन अब हो का अब भी देखल जाए तो सरकार जोन है आज़ादी के बाद से पहले तो भाई लोक कल्याणकारी राज्य हो अपन संविधान से देश, तो लोक का कल्याण करे में भाई अन्न बहुत जरूरी हो।
0: कहने
1: सबके
0: भैया
1: अन्न चाहिए, दू जून का रोटी कहल जाला कि भैया सबके मिले के चाहिए। तो ए अन्न बदे भाई खेती किसानी तो करही के बा।
0: करही बा भैया
1: उम्मा अगर समस्या आवत है कौनो चीज जैसे बरखे बुन्नी के कहला सूखा पड़ गल कहीं, तो ऐसने स्थिति में भी जोन है भैया कैसे खेती किसानी वाले किसानन के संहार के बचाए के ले चले के हो कि उनके कष्ट न हो। काहे कि उनके कष्ट हुई भैया तो समझला कि पूरे समाज के पूरे देश के वो
0: कहने भैया
1: समस्या हुई।
0: किसान के अन्नदाता
1: हाँ
0: कहल जाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और एक
1: भैया।
0: बात हम नंदू भैया कहब कि ई जौन परेशानी रहल किसानन का ना, यही परेशानी के देखते हुए आज के जौन हमने पंचायती देखा यही विषय पे हो, तब फसल बीमा एवं सुरक्षित योजना है, मतलब सरकार हम किसानन बदे बहुत कुछ योजना लेके आल हो।
1: भैया बीमा का बात कहिला ना तो जैसे मनई आपन बीमा करत करावत हैं कि उनके भाई भविष्य सुरक्षित रहे या खुदा न खास्ते कुछ हो गए तो घर परिवार वाले लोग जो न भाई सही सलामत कुछ उनकर सहयोग हो सके। तो ये जो फसल बीमा का भी कुल तमाम योजना चलत हैं कि कैसे सुरक्षित करल जाए किसान के फसल के, तो ये सब बड़ा फायदे की चीज़ है। उम्मा सरकार अलग अलग तरह का बहुत सा योजना कुल चलावत हैं जैसे लाभ मिला किसान के।
0: देखा नंदू भैया ई योजना का मुख्य उद्देश्य ई बा ना, अगर बाढ़ सूखा ओलावृष्टि तूफान कीड़ा मकोड़ा या प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान हो जाता तो इमन किसान के आर्थिक सहायता मिल सके, ये पर सरकार का विशेष जोर बा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोन बा ना, जोन कहला बीमा का बात होते रहल
1: हाँ भैया
0: तो इमन देखा ई योजना 2016 में
1: हाँ
0: शुरू भइल रहल।
1: भैया
0: अई योजना के मुख्य उद्देश्य ई रहल कि जैसे बताया कि प्राकृतिक आपदा और तमाम ऐसन दिक्कत हो जोने से वजह से ई योजना आई किसान के बीच में। और एक
1: भाई
0: बात ई रहल भैया, जोन खरीफ फसल हो, जोन खरीफ का फसल होला ओकरे खातिर 2%
1: हाँ
0: बीमा बा।
1: अच्छा माने जोन
0: हाँ
1: वो प्रीमियम जोन जमा करल जाला
0: हाँ
1: किस्त
0: हाँ
1: के रूप
0: हाँ
1: में
0: प्रीमियम बा।
1: तो
0: और रबी के जोन फसल बा ओमन देखा 1.5%
1: अच्छा
0: चुनो,
1: मतलब
0: हाँ
1: 1.5%।
0: इतना बा। और बागवानी और व्यवसायिक लगभग 1.5% एक अभी
1: ए हो
0: प्रीमियम
1: रे
0: बा।
1: बा भैया।
0: यानी कहे के मतलब ये बा कि सरकार एक निर्धारित रखले हो।
1: कह
0: हाँ
1: दिले
0: कि
1: भैया।
0: इतना
1: देखा बड़ा कुल चीज़ बड़ा सस्ता बड़ा सरल तरीका हो। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जितन भैया कि हमन किसानन के जौन हो जागरूक होए के पड़ी। आज जागरूकता बदे ये जरूरी है कि देखा संकोच के छोड़े के होई। ये जरूरी ना कि फलाने दे अगर लाभ लेना तो हम फलाने से ना पूछब। भाई जाए के हुई पूछा उनसे कि भैया हो कैसे तू ई कुल योजना के बारे में जनला का चीज करे के हुई कि हमें भी एकर लाभ मिला।
0: नंदू भैया देखा जोन योजना का लाभ का बात कही ला वही बात पे हम आवत ही, लेकिन जोन एकर योजना और हो वो सुन ल
1: बताओ भैया।
0: कि देखा किसान सम्मान निधि योजना, जैसा कि आप योजना के बारे में जानते हुए हैं कि कि हर चतुर किसान और जो

0: जानकार किसान हूँ, सब
1: हुँ।
0: जानलन कि देखा सलाना 6,000 जे
1: हुँ।
0: एकर पात्र हो ओके
1: हुँ।
0: सालाना 6,000 के आर्थिक सहायता देवल जाला।
1: हुँ।
0: और जौन कि यो ना कि दूसरे के माध्यम से आवा,
1: हाँ,
0: सीधे
1: खाता में जात
0: अपने
1: है।
0: खाते में आई
1: हाँ
0: ताकि बिचौलिया कोई ना खाए।
1: ये भैया, ये बहुत सही चीज़ है कि किसान भाई लोगन के खाते में सीधे जोन है सरकार से जोन भी मदद बा। अब ये तो सम्मान नामे बा भैया, ये किसानन का सम्मान कर गल है। ये उनके मदद, एक तरह से मदद शब्द न देके सम्मान शब्द देवल, बहुत बड़ा सम्मान किसान का भैल। तो ये देखें कहला कि जोन 6,000 मिलत बा सालाना, ये बड़ा काम कह जाला भैया। जब भी खाद पानी का अगर इंतजाम करे के हो था, तो दूसरे की उरी ना देखे के हुई कि भैया कुछ कर्जी कर्जा हो तो देता ना। ये अपन खाता में से जो है निकललस आ जोन काम आयल ओके कह लेलस।
0: नंदू भैया, आज यह नहीं किसान क्रेडिट कार्ड जोने के नाम से ही स्पष्ट होता है कि एकर का महत्व है। तो एमन जोन हो आपके सस्ता ऋण उपलब्ध हो जाए। जैसे कभी कभी का होला कि पूंजी के अभाव में लोग
1: हाँ
0: बेंगा ना डाल पोतन खेते में।
1: ए भैया, बेंगे के ना इतना बढ़िया बढ़िया देखा देखा टेक्नोलॉजी बढ़ गल कि अच्छी अच्छी मशीन औजार जोन कुलाल हैं वो अगर ले लेथन किसान, तो समझ ला कि बड़ा मदद हो जाता आ हर कमों में जोन है आसान हो जाता।
0: और
1: तो
0: देखा
1: एकरे
0: अंत,
1: बदे पैसा का तो भाई जरूरत पड़ी।
0: देखा नंदू भैया अंत में देखा हम ये आल ही कि ई कुल तमाला योजना हो गल, क्रेडिट कार्ड हो गल, किसान सम्मान निधि हो गल, मतलब
1: भैया
0: कुल तरह से फायदा मिलल।
1: हाँ
0: लेकिन अगर कौनो बहाने किसान अगर
1: हाँ
0: घायल हो जात हो, दुर्घटना
1: अच्छा
0: हो जात हो
1: हाँ
0: या जिंदगी चल जात हो, ओकरे बदे एक योजना हो किसान सुरक्षा और दुर्घटना बीमा योजना।
1: अच्छा भैया
0: और
1: का
0: ये
1: हाँ
0: योजना के तहत जौन अगर ओकर मृत्यु हो जात हो तो के आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रावधान मतलब करावल जात
1: अच्छा
0: हो।
1: भैया, तो देखा एक तरह से देखल जाए जितन भैया, तो सरकार जो है बढ़ चढ़ करके जो है किसान भाई लोगन का जो है मदद करत है, सबकर साथ सबकर विकास
0: विकास
1: करत हो भाई। देखा तो बहुत बड़ा काम ही है, लेकिन हमहन सब जने के जो है एक चीज़ ही ध्यान देवे की हुई कि जितना भी योजना सरकार की तरफ से है तो ओकर जोन है लाभ लेवे बदे एक कदम आगे बढ़ावे के हुई।
0: आगे बढ़ाव पड़ी। और एक किसानन के देखा अपने आवेदन करे बदे अपने किसान भाई बहनी के अपने नज़दीकी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि विभाग कार्यालय या ऑनलाइन कोनो पोर्टल हो पर आवेदन कर सकलन।
1: बिल्कुल भैया, कदम बढ़ावे से मतलब यह हुआ कि पंच लोग जौन है घरे से बहरे निकलें आ ई जौन कुल केंद्र हैं, चाहे ब्लॉक हो चाहे ई कुल जोन कंप्यूटर वाला जोन व्यवस्था कुल भैल बा, वहाँ जाए के जोन है ओकर आवेदन करें, ओकरे बारे में अच्छी जानकारी करें, का का कागजात चाहिए ओ कुल के दे के अपन एकर लाभ लें।
0: नंदू भैया
1: हाँ
0: देखा
1: भैया
0: बात बात कही तो होता ही, तो यही के सनी सा सुन लो जा।
1: हाँ सुनवावल जाए सनीस।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जीतन भैया
0: आनंद भैया
1: देखा अपने पंचायती में हमहन अपने किसान भाई लोगन के जरूरी बत कही जोन रहेला ओके सुनवाई ला जा। तो देखा अपने बीच में डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह जी हुआ एम्मा जोन है भाई, जोन असिंचित दशा होले जहाँ पानी कमी हो था, इसने स्थिति में उन्नत तकनीक का खेती करे का वो विषय पे बात करे के है डॉक्टर साहब से, तो तनी से हम बतिया लेते हैं पंच लोग के सुने।
0: हाँ सुनो।
1: डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह जी, आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हुआ कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी में। आज आपसे ये जानल चाहब कि जौन असिंचित दशा है खेती किसानी में अपने, वो का चीज है और कैसे ये स्थिति उत्पन्न होले।
5: पहले सभी लोगों को नमस्कार, किसान भाइयों को भी साथ ही साथ। जैसा कि विषय है असिंचित दशा में खेती का, तो
1: जी
5: असिंचित दशा वह दशा है जब सिंचाई के लिए किसान के पास पानी की कमी हो जाती है।
1: जी
5: कि जैसे कि आपके पास ट्यूबवेल है, बोरिंग है, तालाब है, कुआं है, तो उसके माध्यम से जो लोग सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन जब एक सीजन जैसे बरसात का सीजन जैसे अब आने वाला है जुलाई महीने में, जून जुलाई का, इसमें तो बरसात हो जाती है लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता है, तो
1: जी
5: पानी खेत से बाहर निकल जाता है। जब पानी नहीं हो पाता तो बोरिंग के न होने की वजह से तो जो फसल हम लगाते हैं वो फसल हमारा उत्पादन जो होता है कि क्या आखिरी जाते जाते सिंचाई पानी की नमी की कमी होने के कारण फसल फसल उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है तो किसान को वहाँ पर नुकसान होता है। तो सिंचित दशा में सुधारने के लिए

0: उपाय है कि सिंचित क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। तो
1: अच्छा।
0: सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए कि आपको सिंचाई का जो पानी है, जल का, बरसात का जो पानी है, उसको एक तो इकट्ठा कर लिया जाए तालाब के माध्यम से, या आप कुआं का अगर है तो उस तरह का, या बड़े चेक डैम बना करके, जिससे कि आपका खेत के पास अगर इकट्ठा हो जाए तो उसको हम बोरिंग से या पंप के द्वारा उसको सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। और ये क्योंकि एक स्थिति इस साल सबसे ज्यादा अल नीनो इफेक्ट आया है, जिसके कारण
1: अच्छा।
0: हो सकता है कि इस साल बरसात की कमी हो, क्योंकि जो खेती का समय है उस समय बरसात समय इस साल कम होगा, तो
1: अच्छा।
0: ये क्या सिंचित दशा होने वाली है। तो इसलिए इसके आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे जो फसल
1: अभी
0: पे है।
1: जैसे आप कहना कि मौसम का परिवर्तन, तो क्या इक्वल का असर पड़ेगा ये सिंचित दशा, असिंचित दशा के उत्पन्न हुए में?
0: मौसम का परिवर्तन सबसे ज्यादा पड़ता है कि जब आपका टेम्परेचर देख रहे हैं कि इसमें 40 से 45 डिग्री है, किसान भाई अब नर्सरी धान की डाल रहे हैं, तो धान की खेती और गेहूं की खेती दो ही फसल हमारे प्रदेश में ज्यादा प्रचलित है। तो धान गेहूं के जब चलने लगाते हैं तो उसमें पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता पड़ती है। तो पानी के लिए क्योंकि किसानों के मानसिकता ही बना हुआ कि हम धान के खेत में हमेशा अगर 4 इंची पानी अगर खेत में नहीं है तो हमारा उत्पादन
1: कम
0: नहीं
1: हो।
0: होगा या कम होगा, तो इसलिए वो, लेकिन हम लोग जब नई नई तकनीकी आ गई है कि जिसके कम पानी में भी आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, और इसीलिए सिंचित दशा के लिए बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे फसलें का चुनाव करके किसान किया जा
1: अच्छा।
0: सकता है उसमें।
1: तो जैसे ये भल की जल का संरक्षण करके, अभी आप बताओ कि चेक डैम वगैरह बना करके करल जाए, तो माने बरसात आवे से पहले ही व्यवस्था करे कहले कि बरसात भैले के समय करे
0: ये
1: एक।
0: खास तौर से मई और जून के महीना में कुछ सरकार के द्वारा योजना भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा चलाई जाती है, जो तालाब का योजना है, फिर आपका मेड़बंदी योजना है, तो मेड़बंदी के द्वारा आप जैसे खेत आपका जैसे ताल ताल की तरफ का है तो वहां पे मेड़बंदी बना करके, जिससे कि खेत का पानी
1: पानी रुक
0: खेत में
1: जाए,
0: ही रहे,
1: रुक जाए।
0: रुक जाए, और खेत का पानी जब रहेगा तो आपके खेत में नमी
1: नमी
0: बराबर
1: रहे।
0: बनी रहेगी, जिससे कि आपका जो फसल लगाएंगे वो आपका पूरा उसको जो 3-4 महीने उसको नमी बराबर मिलती रहेगी, तो उत्पादन उसमें प्रभावित
1: ठीक
0: नहीं
1: है।
0: होता है।
1: अच्छा, अभी जैसे चर्चा भइले कि उन्नत प्रजाति वगैरह कुछ ऐसा नहीं जो कम से कम पानी लेते हैं, तो ए घड़ी जो अगर असिंचित दशा के स्थिति है बनल, तो ओ घड़ी किसान कौने तरह से फसल का चुनाव करें, ओकरे प्रजाति का चुनाव करें?
0: देखिए हमारे देश में असिंचित और सिंचित दो दशा है। कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ है, चाहे वो पूरा उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा, इधर के एरिया जो है
1: जी।
0: आपका असिंचित क्षेत्र में आता है, यानी एक ही सीजन में वो खेती कर पाते हैं। कहीं कहीं हमारे यहाँ पे भी जैसे आपका सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ये क्षेत्रफल जो है जो वहाँ पे खेती खरीफ में होता है, यानी जो अब आ
1: अच्छा,
0: रहा है धान का
1: बरसात के
0: बरसात
1: समय।
0: वाला, उसके बाद रवि के मौसम में नहीं कर पाते। तो वहां पे कि हम लोग कहते हैं कि भाई चुनाव करिए फसलों का जो है, एक तो पहले कम दिन का फसल का चुनाव करिए, जिससे कि आपका समय कम समय में ही वो खेती हो जाए। रवि मौसम में ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द है, मूंग है, इन फसलों का जब चुनाव करेंगे तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कम दिन वाला, उड़द मूंग लेते हैं तो वो करीब 70-70 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप धान में भी लेते हैं, धान में बहुत सारी प्रजातियां अब आ गए हैं जो आपको कम दिन में हो जाती हैं कुछ, जो
1: अच्छा।
0: क्योंकि पहले हम जो लगाते थे 150-160 दिन की, इसमें उत्पादन तो होता था लेकिन उसमें समस्या आती थी कि जब फसलें फेल हो जाती थी, यानी फसल लगाते थे उसमें फसल हमारा खत्म बीच में हो ही नहीं पाता था
1: तो
0: सिंचाई न
1: अगर
0: होने के कारण,
1: जी, माने लंबे समय तक अगर फसल है तो डर
0: तो
1: भी ज्यादा हो
0: डर
1: कि
0: भी,
1: ऊपर
0: बरसात हुआ ना
1: बीमारी और
0: हुआ,
1: ये सब का भी
0: नहीं
1: प्रकोप
0: बरसात
1: हो।
0: का भी सबसे ज्यादा असर है कि बरसात नहीं हुआ तो पानी आप नहीं दे पाएंगे, तो फसल बीच में होता कि हमको तो चारे के रूप में काट के जानवर खिलाना पड़ जाता है किसान को, तो वहां पे फसलों का नुकसान हो रहा है। तो उसमें हम लोग करते एक उपाय और है कि अंतरवर्ती फसलें जो है, एक दो फसलों जैसे एक फसल में के बीच में दूसरी फसल लगा सकते हैं, जैसे अरहर लगाए हैं, ज्वार लगाए हैं, बाजरा लगाए हैं, उसके बीच में हम लोग उड़द या मूंग ले सकते हैं
1: अच्छा,
0: कि अगर एक फसल नुकसान हो जाए तो दूसरा
1: दूसरा
0: हमारा
1: लाभ दे
0: लाभ
1: दे।
0: दे दे। और उसी के साथ साथ जैसे हम लोग धान लगाए, कभी कभी होता है धान में भी नुकसान हो गया, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि तोरिया, जैसे आपका धान रोपाई कर लिया किसान, जाकर अगस्त महीने में उसका धान अगर नुकसान हो गया कि नहीं लग पाए तो वहां पर तोरिया लगा लेता है, तो वो धान की फसल का जो नुकसान है वो तोरिया में उसको प्रॉफिट हो जाता है, लाभ मिल जाता है, तो वो उसका उसको हम लोग कहते हैं कैच क्रॉप के रूप में, यानी कि सीजन को पकड़ने, एक सीजन दूसरे सीजन में नुकसान ना हो, कम दिन बीच में ही हम दूसरी फसल
1: ले
0: ले
1: ले।
0: लें। और एक अंतरवर्ती वो जो बताया हम कि अंतरवर्ती फसल में लेने से भी फायदा कि कोई ना कोई दोनों कुछ ना कुछ लाभ हमको दोनों मिलेगा, तो नुकसान हमारा जो है पूरे साल भर में
1: कम हो।
0: उसको हम लोग कम, जोखिम जो होता है उसको कम कर सकते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: जैसे हमन फसल का चुनाव हो गल, आ फसल लग गई ले, आ असिंचित दशा का स्थिति है, एम्मा

0: अगर खरपतवार लगत हो तो ओकर प्रबंधन कैसे हो?
1: इसमें है कि देखिए क्या है कि एक तो होता है कि जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि जब बुआई अगर जब भी फसलों का करते हैं खरीफ में, तो तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो अंकुरण से पहले यानी बीज हम डाल दें अंकुरण से
0: जी
1: पहले और बुआई के बाद उस बीज की अवस्था को हम लोग तो प्री इमरजेंस कहते हैं। तो बीज अंकुरण के बाद की अवस्था है उसके पहले हम लोग दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें जैसे पेंडीमेथिलीन दवा है उसका
0: जी
1: प्रयोग कर सकते हैं। आजकल नई तकनीकी धान के क्षेत्र में आई है जैसे DSR सीधी धान की सीधी बुआई,
0: अच्छा
1: उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सीधी जैसे रुपाई नहीं वो बीज नहीं डालना है, डायरेक्ट हम जीरो टिल मशीन से या उसके सुपर सीडर मशीन से
0: अच्छा
1: बीज
0: जैसे
1: डायरेक्ट हम जैसे गेहूं
0: जैसे
1: बुआई करते
0: गेहूं
1: हैं
0: बुआई होता।
1: वैसे बुआई करके तुरंत हम लोग अगर नमी है खेत में तो हम लोग उसमें पेंडीमेथलीन का प्रयोग करेंगे। अगर उसको नहीं कर पाए उसके करने के बाद एक पोस्ट इमरजेंस आता है बिस्पायरीबैग सोडियम,
0: अच्छा
1: एक खरपतवार है जो 15 से 20 दिन पे डालते हैं। अगर उसके बाद भी अगर खरपतवार तो 30 से 40 दिन पे एक बार और डाल देंगे। तो आपका धान में बहुत सारे जो रुपाई का खर्च है, फिर आपका रुपाई के बाद जो उसमें खरपतवार का जो खर्च है वो करीब करीब आपका लागत है वो जुताई से लेकर के रुपाई तक वो आपका कहीं कहीं बचत। बहुत सारे किसान संडा विधि से लगाते हैं तो उससे भी असिंचित दशा में उनको पानी ज्यादा से असिंचित लगाएंगे तो इसीलिए लगाते हैं संडा विधि कि असिंचित दशा होने के कारण कि हमको जून महीने बारिश नहीं होगा तो हम लोग संडा लगा करके उसको बचाए रहते हैं 1 महीना कि हम आगे चल के फिर रुपाई जब बरसात आएगा तो
0: हल्की हल्की
1: रुपाई
0: सिंचाई कर देवे
1: सिंचाई
0: लोग।
1: करके पानी को बचाते हैं। तो ये भी तकनीक उसमें है, एक है
0: अच्छा, तो ये तरीके से मैंने ओकर खरपतवार पर नियंत्रण
1: खरपतवार
0: कर
1: नियंत्रण कर
0: सकत हूँ।
1: सकते हैं।
0: जैसे पानी बचावे खातिर जैसे सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था जोन होले तो वो कौन तरह से काम करत है
1: इस
0: मां?
1: सूक्ष्म सिंचाई में बहुत सारी स्कीम उद्यान विभाग के द्वारा भी मिल रहा है। बहुत सारे जैसे किसानों पहले होता था कि पानी हम लोग नाली विधि से देते थे तो नाली विधि में क्या होता था पानी का नुकसान ज्यादा होता था, एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय कम ज्यादा लगता था और पानी नाली में कहीं घास है तो वो सब पूरा बह जाता, नुकसान ज्यादा होता था, करीब 30 से 40%
0: और सोख भी ले
1: सोख भी
0: पानी।
1: लेता था नाली। अब जो पाइप वाला सिस्टम आ गया, लपेटा वाला पाइप आ गया है, फिर स्प्रिंकलर का पाइप आ गया है, तो इसमें जो काली वाली पाइप उसमें एक आती है स्प्रिंकलर सेट में आता है 20-20 फीट का, सब सरकार के द्वारा उसमें सब्सिडी है करीब करीब 90%। अगर जनरल किसान है तो उसको 80% है और कैटेगरी का है जन 80-80 का है तो उसमें उसको 90% छूट पे उसको पाइप मिलता है। वो एक खेत से दूसरे खेत में उसको छोटे टुकड़ों में जहां उसको ले जाना चाहे उसको ले जाने में आसानी है। खेत में पानी तुरंत आप ट्यूबवेल से कनेक्ट करिए आप तुरंत आपको 5 मिनट खेत में पानी पहुंच जाता है, जो समय का बचत और साथ ही साथ पानी का उपयोगिता वहां पे बढ़ जाती है, उसका यूज इफिशियंसी हम लोग बढ़ा लेते हैं। उसके साथ साथ स्प्रिंकलर से जो इसे आपका बागवानी के अगर लोग किसान किए हैं खेत सिंचित दशा में, क्योंकि कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे ऊंचा वाला है तो वहां पर
0: ऊंचा।
1: पौधे लगाते हैं जो फलदार पौधे हैं तो वहां पे स्प्रिंकलर सेट को लगा सकते हैं। तो स्प्रिंकलर सेट और इसके ड्रिप इरिगेशन जिससे कि वो बूंद बूंद सिंचाई होती है तो उसमें उपयोगिता, जैसे टमाटर के खेत में लगाते हैं तो 1 किलो टमाटर उत्पादन करने के लिए आपको 2.5 से 3 किलो पानी मात्र लगता है लीटर, इतने पानी होता है। वही धान हम लगाते हैं तो अगर लंबी अवधि की धान है तो आपको 5,000 लीटर 1 किलो धान उत्पादन करने में लगता है
0: मैंने टमाटर बदे ड्रिप वाली व्यवस्था
1: ड्रिप।
0: बढ़िया रही।
1: टमाटर के लिए है, आपका फल आम का बगीचा है
0: छोटा
1: या
0: पौधा जोन रही
1: नींबू का बगीचा है तो उसमें आप अमरूद का है उसमें आप लगा लेते हैं तो वो कम पानी में ज्यादा से ज्यादा होता है तो पानी की बचत होती है। इसीलिए कहा था कि अब धान की जो कम अवधि वाले जिसमें पानी अब 2 से 2.5 3 हजार लीटर पानी लगता है 1 किलो धान उत्पादन में, तो ये सब फसलों का चुनाव और फसल का विविधीकरण, क्योंकि हम एक ही खेत बार बार धान गेहूं लगा रहे हैं, धान की जगह मक्का लगाइए, बेबी कॉर्न लगाइए, जो बेबी कॉर्न आजकल दिख रहे हैं मार्केट में इसका लाभ भी
0: बहुत
1: है,
0: बहुत तो कर मांग
1: मांग बहुत ज्यादा है। तो मक्का के साथ आप तिल लगा सकते हैं, फिर खरीफ में जब रबी में जाकर के आप गेहूं ले सकते हैं, फिर आलू ले सकते हैं। तो इस तरह फसलों का जब हेर फेर करते हैं तो उसमें खेत की आपका जो उत्पादकता है वो भी बढ़ती है और खेत की जो स्वास्थ्य है मिट्टी का जो स्वास्थ्य वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये खेत और दूसरा एक चीज है कि मिट्टी की जांच किसानों को हर 2 से 3 साल पे कराना चाहिए जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में पता चले। तो वो हो गया कि आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको यूरिया DAP पोटाश देना है तो वो आपको लागत जो होता है वो किसान का वहां पे बच
0: कम
1: जाती है।
0: होता है। अच्छा, जैसे ये एकीकृत फसल प्रणाली कहल जाते तो असिंचित दशा में किसान बदे कैसे उपयोगी होता है?
1: कि किसान के लिए कि अगर आपके पास सिंचाई के साधन नहीं, खेत आपके पास कम किसान के पास है तो एकीकृत फसल प्रणाली है कि जो आप उसके साथ जैसे धान फसल ले रहे हैं चाहे गेहूं ले रहे हैं अगली सीजन नहीं ले पाते तो आप बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, आप उसके अलावा

0: मशरूम का है, मधुमक्खी पालन है, जिसके
1: हम्म,
0: लिए कम एरिया जरूरत है, आपको जमीन की भी जरूरत नहीं है, इस सब का व्यवसाय को भी उसके साथ जब जोड़ लेते हैं खेती के साथ, तो आपका जो लाभ होगा सिंचित दशा में, जो सिंचित दशा उससे ज्यादा कहीं ज्यादा हो सकता है, और अपने उत्पादन में भी आप बढ़ावा दे सकते हैं।
1: जी। तो कुछ सुझाव भी दिए किसान भाई लोगों के कि असिंचित दशा में
0: सिंचित दशा में
1: कैसे
0: जैसे
1: खेती
0: हमारे यहाँ जो वाराणसी का है, गोरखपुर बस्ती इधर का जो एरिया अपने यहाँ, तो एक तो सीधी बुआई का है इस
1: करें।
0: सीजन में, दूसरा है कि अरहर की फसल लें, उड़द लें, मूंग लें, क्योंकि ये सब फसलों कम दिन में आपको तैयार हो जाएंगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कम दिन का चुनाव करिए, कि हो सकता बरसात हो ना हो, या बाद में चल के बारिश ज्यादा हो जाए तो आपको फसल कभी कभी डूब जाती है बरसात से, तो बीमा भी करा सकता है किसान। ये सब तकनीकी को ध्यान रखते हुए उत्पादन
1: खेती
0: आप
1: करें,
0: खेती करिए,
1: ज्यादा लाभ
0: जिससे
1: ले
0: लाभ ले सकते हैं
1: सके।
0: सिंचित दशा में, कम
1: तो
0: दिन के फसलों का
1: जी
0: चुनाव
1: जी
0: करना
1: जी
0: है।
1: तो डॉक्टर साहब आप अपने पंचायती में आई ना, और असिंचित दशा में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे बढ़िया खेती किसानी कर सकत हूँ अपन किसान भाई लोग, ये विषय पे जो है जानकारी आप देना, एक बदे आपके बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: नंदू भैया
1: हाँ भैया,
2: बड़ा नगद का बात कही रहे हो। देखा जौन किसान के पास कोनो उतना साधन ना हो तो असिंचित दशा में कैसे खेती के उन्नत तकनीक से बनायल जा, वो विषय पे बड़ा अच्छा जानकारी देना है डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह, और आप बड़ा फरिया के पूछबो कैला है।
1: देखा ये जरूरी है भैया कि जानकारी होए के चाहिए किसान लोग के कि का का चीज़ हम हन इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कम जहाँ पानी बा वहाँ कौन चीज़ का तकनीक इस्तेमाल हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले लेवल जाए।
2: ये नंदू भैया देखा हो, जब तक अपने पंचायती में कुछ मन मनसायन ना होत ना,
1: हम बुझत है।
2: तब तक आनंद नहीं आवत। और देखा ये आज के लोकगीत में सतीश चंद्र यादव और साथी का लोकगीत गवनई हो,
1: हाँ सुनवाओ।
2: तो सुनाओ किसान भाई सुना।

0: नंदू भैया,
1: भैया
0: बड़ा नगद का गवनई रहल कि हउए किसान हो, देश का जवान
1: भैया
0: हो।
1: बड़ी बड़ी बात कह देना सतीश चंद यादव उनका साथी लोग गौनई में। आ अब जो है ना अपने पंच लोगन के काल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे देवल जाए। तो देखा खेती का बात ई हुई बिहाने 6:05 पे एम्मा मरचा के खेती विषय पे जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह भैया।
0: देखा सांझी के जोन अपन कृषि जगत का कार्यक्रम होला, एमन नगद का बातचीत हो। देखा गन्ने की फसल में सामयिक कार्य काका करे के हो, तो वो विषय पर जानकारी दी है वीरेंद्र
1: वीरेंद्र
0: कुमार
1: कुमार।
0: सिंह।
1: तो अभी कुल देखा जितन भैया बोलत बतियावत कुल बात हो गई। अच्छा चले का बेला भी हो गल, तो चलत है जा पंचो
0: पंचो राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म का गीत, और अब आइए सुने यशुदास और हेमलता की आवाज में चितचोर फिल्म का गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

यशोदास और हेमलता की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे चित चोर फिल्म का गीत, और अब आइए सुने आशु भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में हमजोली फिल्म का ये गीत।

हम जोली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 7:15 हो रहे हैं। सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार अनुज कुमार श्रीवास्तव पुत्र ऋषि कुमार श्रीवास्तव 1 मई 2026 को घर से यानी ब्रह्मपुरी कॉलोनी कजरहवा पोरखा मिर्जापुर सुबह 6 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 18 वर्ष, कद 5 फीट, एक हरा बदन, रंग गेहुआ और इनके दाहिने कान के ऊपर का भाग कटा हुआ है। ये फुल पैंट और क्रीम कलर की हाफ टी शर्ट पहने हुए हैं और इनके पैरों में चॉकलेटी रंग का चप्पल है। इनके बारे में जानकारी देने वाले को 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 6388829261 इस नंबर पर सूचित करें। सुनिए एक और सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार शहनाज बानो पुत्री बबलू 29 अप्रैल 2026 लगभग भोर में 3 बजे दिन बुधवार को घर यानी महुगढ़ी ड्रमंडगंज मिर्जापुर से निकली और वापस नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 18 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला है और ये लाल और काले रंग का सलवार समीज पहनी हुई हैं। एक हरा बदन, चेहरा गोल और आंखें काली हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 9651331195 इस नंबर पर सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में

शाम के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 7:20 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूत पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और

0: संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।

0: जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 18 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास 1 और जन विश्वास 2 के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
0: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
3: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
4: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब

0: प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। आशा भोसले, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की मिलजुली आवाजों में सुनिए निकाह फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म का ये गीत।

द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और शरद कुमार की मिलीजुली आवाजों में। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की मिलीजुली आवाजों में प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का ये गीत।

प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने उषा टंडन और राहत फतेह अली खान की गाई गजल।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उषा टंडन और राहत अली की गाई गजल। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:10 हो रहे हैं। सुनिए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की नवी कड़ी।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
2: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने 2 बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
3: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया।

0: फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला। भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग PPP कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है PPP को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली PPP माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं

0: प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रीफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं, तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था, अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं, तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आया।

0: कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना है।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते।
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के

0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये। इसमें 7 principles के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे। सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
2: धन्यवाद।
1: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
2: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
2: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
2: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दी।

0: कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदम्बरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में, जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या
0: हाँ, तो
1: करेंगे।
0: ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो, लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो, जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में अपने

0: देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं। तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो
1: हैं
0: किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है, पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रही है। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार का खिलाफ देश का खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना, और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण।

0: जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही, और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है, और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की नवी कड़ी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।

0: हमने उन देशों के साथ लगातार
1: एंगेज इन
0: बातचीत जारी
1: कंट्रीज
0: रखी
1: हु
0: जो
1: आर
0: तेल,
1: ऑयल
0: गैस,
1: प्रोवाइडर्स, गैस
0: एलएनजी, एलपीजी
1: प्रोवाइडर्स, वी कैन
0: तथा
1: नॉट
0: उर्वरकों
1: एलएनजी
0: के उत्पादक
1: एलपीजी
0: हैं, क्योंकि ये
1: फर्टिलाइजर
0: राष्ट्रीय हित का विषय
1: मैन्युफैक्चरर्स
0: है।
1: ट्रेडर्स
0: इसलिए
1: बिकॉज
0: विदेश
1: दिस इज
0: नीति
1: द
0: पूरी
1: नेचर
0: तरह
1: ऑफ
0: से
1: सो
0: उस
1: फॉरेन
0: समय के प्रमुख
1: पॉलिसी
0: राष्ट्रीय
1: सीरियसली
0: लक्ष्यों के
1: इज इन
0: अनुरूप
1: सिंक
0: संचालित
1: विथ
0: होती
1: व्हाट
0: है।
1: आर एक्चुअली द प्राइम नेशनल गोल्स ऑफ द मोमेंट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड 19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अलसभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पतनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनसीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के

0: प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी राम जी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है।

0: orange color warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुजश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमद रफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इन्हें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। हुकाम की जानिब से सिविल सोसाइटी के सरकर्दा इत्तेहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इकतसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर DD न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इकतसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए है। ڈاکٹر جائشنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان کلیدی خطوں

0: में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमात ज़्यादा काबिल रसाई, कम खर्च और मेयारी हो गई हैं। साल 2018 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक व इक्तिसादी तौर से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: फायदा होगा, क्या होता है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या होता है मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नजदीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नजरियात का तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और कुवैत के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इरादा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने, जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल जाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी इतवार के रोज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम अज कम एक साल तक सोना ना खरीदने की वज़ीर-ए-आज़म की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। ज़राए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। ज़राए के मुताबिक बैन अल-अक़वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निज़ाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निज़ाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाइयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। یہ ہوائی

0: अवैध और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निजाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तई अहदबस्ता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और जमीनी बंदरगाहों की मजमू कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के क्याम को मंजूरी दे दी है। यह निजाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। यह अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का तावुन हासिल है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की जानेब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का उबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज रखी है। VBG रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनेकाद के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के नफाज के पेश नजर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तिजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूदात पर वसी तर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तिहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तिहान के मराकज तक पहुंचें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरिकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाद हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेशकदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सैफ अफ्रीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। अब आइए सुने मनन रुदास और अनुराधा पौडवाल की गई ये गजल।

चंदनदास की गाई इस गज़ल के साथ ही प्यार फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है।
0: भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौड़ से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गाँव में कितनी खुशी थी?
2: मतलब छोटी थी जब उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले, और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। टूर्नामेंट हुआ था ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, तो दो टीमें आई हुई थी नौगांव और सागर, तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था तो ऐसे ऐसे घूम रही थी, तो उन्हें आके जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट, तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी।

0: फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
1: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहां चयन हो गया?
0: जब मैं गांव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बंगाल के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो मैच जीत के हम लोग आए और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला गुआरा में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे, कब मैं आऊँ कब मुझसे सब लोग मिले। मतलब एक प्राउड था कि हाँ कुछ तो सबको खुशी थी, ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली चीज में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची फिर सबके माहौल देखा, सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
1: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: जब सीनियर T20 में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम पे, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी उनका फोन आता है कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कभी मेरे पास लिस्ट नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी। जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया सबको पता चल गया। गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति के सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग सबको पता चल गया था, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहां पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए बड़े प्लेयर्स से चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
1: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
0: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी, पहले तो फॉरेन प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में, तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे, तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सेट सा लगे, रन पड़ गए मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर्स प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम ही है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
1: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौड़ के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई?
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की, उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था, तो हम 3-4 लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया। और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ मेरी स्टूडेंट खेल रही है और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
1: अच्छा, बहुत
2: बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं। और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
1: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: एक तो क्या है मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है, तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले
1: जी।
2: तो

0: एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई तो अभी लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है।
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
0: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साइंस स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट। उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गांव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए, तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
1: उस समय आपको
0: तो
1: लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
0: हाँ, देखिए उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, क्या है जो टेक्निकली वो तैयार नहीं थी, और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको। हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
1: जी, आपने
0: आज तक
1: सहयोग
0: उससे
1: किया।
0: हाँ, तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। पर उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
1: जी
0: तो
1: हाँ,
0: करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है। संघर्ष
1: जी हाँ, उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
0: के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक, जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
1: अरे वाह।
0: तो हाँ, तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। मतलब ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
1: जी, क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
0: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड दो चीजें उसकी बहुत अलग है। हट के भी देखेंगी तो आपको अलग ही उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की उसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है
1: मतलब
0: बॉल
1: एक
0: में।
1: पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति,
0: हाँ नहीं, जुनून तो है ही,
1: तभी इतने आगे
0: बाकी
1: पहुंची हैं।
0: जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: देखिए हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं। और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता, और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
1: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
0: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौर जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30 से 11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
1: जी
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। थोड़ी
1: कितना कम
0: परेशान थी,
1: समय मिला।
0: हाँ
1: जी
0: थोड़ी परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी
1: जी
0: भी वर्ल्ड कप में जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर
1: अच्छा,
0: बधाई हो।
1: वह युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे ही एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता

0: खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हीलचेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शैडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
1: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
0: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
1: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
0: जी,
1: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
0: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
1: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
0: जी
1: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभाग।
0: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
1: बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पे ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पे उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेला।
0: जैसे हमारे सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
1: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज भी है।
0: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
1: अच्छा, के साथ में ही जाते हैं।
0: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
1: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
0: जी,
1: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन और उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहली ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
0: बहुत अच्छी बात है तो कि जो उस तरह के खिलाड़ी
1: में था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
0: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
1: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, चूंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है, जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और शोहरत भी।
0: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था।
1: जी जी,
0: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
1: और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे प्लेयर रहे वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में, उन्होंने 19 बॉल में।
0: जी, बहुत बड़ी बात, और वाकई में ये जो मैच है देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे
0: जी,
1: लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी।

0: में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ
1: जी
0: तो न्यूज रिपोर्टर से लेके लोकल पब्लिक से लेके, क्योंकि
1: जी
0: पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग आए और खेल रहे थे, तो
1: जी
0: देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है। और
1: जी
0: कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
1: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग हैं और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ
0: धन्यवाद।
1: सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं, और इस विषय में हमने बातचीत करी।
2: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
1: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
2: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
1: अच्छा,
2: जो कि
1: बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
2: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे शिकायत भी बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली, और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी अभी लगभग 16 वर्ष, और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जो दिखा रही है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
2: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे, ये
1: पानी से दूर रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यानचंद स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर, हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा इसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
1: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
2: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
1: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
2: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ता है। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी हमारे सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के पैर चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला दो, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं। पैर हमेशा मोड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
1: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
2: इसकी चार चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये सुनेंगे चार स्टाइलें हैं। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा है भाई, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा कौन बच्चा, बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
1: उसी में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
2: उसको बारीकी बताते हैं।
1: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
2: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है, और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर की कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी नहीं, इन सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
1: परेशानी हो जाएगी। आपने तैराकी

0: स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद।
1: कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित

0: अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
1: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई हैं।
2: शुक्रिया।
1: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
2: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का एक था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
1: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
2: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहां पहुंच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
1: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
2: मुझे ऐसे लगता कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट देके ही निकलना है, यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहां से। फिर
1: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति है जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
2: करीब मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CISF में हूँ, वहाँ पे कोच के उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैम्प में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो एक बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर हैं और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली है।
1: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
2: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
1: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है,
1: जी
2: अगर आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
2: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए इसलिए मैं बोल नहीं सकती
1: लेकिन
2: कि क्या होता आगे। हाँ बाकी मैं
1: हमारी
2: लगी हूँ
1: शुभकामना है।
2: प्रैक्टिस
1: और
2: में।
1: इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और
2: जी
1: आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप।
0: खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
3: खेल दर्पण।
4: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये लखनऊ की
5: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में सुनिए डॉक्टर आर पी शास्त्री का वायलिन पर बजाया राग मालकॉन्स।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आरपी शास्त्री का वायलिन पर बजाया राग मालकौंस। अब आइए सुने इन्हीं का वायलिन पर बजाया राग पीलू में धुन।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आर पी शास्त्री का वायलिन पर बजाया राग पीलू में धुन। आपके साथ तबले पर संगति की थी पंडित कुबेरनाथ मिश्र ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनसीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है।

0: Buletin.
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।